श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

हजारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौड़ पर। तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद, यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफल।

0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
1: लीजिए सुनिए SR एजुकेशनल ट्रस्ट भुता बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
2: SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाए समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: SR हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
4: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।
3: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली।
1: बहनों भाइयों, अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। आज का कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य लेकर उपस्थित है आपका दोस्त रविंद्र मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं,
5: आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रतन गंगवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद रविंद्र जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, आज का विषय है

0: पेट के दर्द का कारण और इलाज।
1: दर्द एक महसूस करने वाली चीज है, जो कि हमारी कहीं पे भी कोई बीमारी होती है, तंत्रिकाओं द्वारा दिमाग को पहुंचती है, दिमाग उसे सेंस करता है और वो एक पीड़ा के रूप में हमें महसूस होती है। ये दर्द शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, वो अलग अलग विभिन्न प्रकार की बीमारियों की वजह से होते हैं। जैसे पेट, यानी कि सिर्फ उसको एक ही कंपार्टमेंट में विभाजित किया जाए, पेट को हम चार हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऊपर का, नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, दाईं तरफ, बाईं तरफ और पूरा पेट, ऐसे पांच भागों में हम विभाजित करके इसको देख लें। तो दर्द कहाँ का हो रहा है, उसमें किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, इससे पता लगता है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम बीमारियों का नाम यहाँ पे लेना चाहें तो गंभीर बीमारियां कुछ होती हैं जिनमें मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाता है, जैसे आंत का बस्ट होना, आंत का रुक जाना, पैंक्रियाटाइटिस नामक एक बीमारी होती है जिसमें पैंक्रियाज ग्रंथि, जो कि स्राव निकालती, खाना पचाने वाली, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। गॉल ब्लैडर की बीमारियां जिसमें एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होती है, या गॉल ब्लैडर फट जाए, गॉल ब्लैडर रप्चर हो जाता है, उसकी गैंग्रीन हो जाती है, यानी सड़न हो जाए उसमें। लगभग पूरे पेट में ही इसमें दर्द होता है, पथरी हो गुर्दे की, या गुर्दे की नली में पथरी हो, गुर्दे में और इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे पस इकट्ठा हो जाए, मवाद इकट्ठा हो जाए। साथ ही साथ अगर हम और गंभीर बीमारियों की बात करें तो लिवर एब्सेसेस, मल्टीपल लिवर एब्सेस होते हैं, हमारे लिवर में बहुत सारे फोड़े बन जाते हैं, उसमें भी दर्द होता है। लेकिन अलग अलग बीमारियों में दर्द अलग अलग तरह से होता है। ऐसी पेट में अल्सर का भी बहुत तेज दर्द होता है। अगर पेट में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अंदर पूरा लालामी आ जाती, सूजन आ जाता है, उस स्थिति में भी दर्द हो सकता है। देखने में आया है कि पेट दर्द ऐसा नहीं सिर्फ पेट की बीमारियों से ही हो, ऊपर की जो छाती की बीमारियां हैं
0: जी,
1: या पीछे रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं, वो भी पेट में दर्द करा सकती हैं। तो जो छाती की बीमारियों में ऊपर के पेट के हिस्से में मरीज अगर कहता है मेरे दर्द हो रहा है, तो दिल से भी आ सकता है, हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। दिल का नीचे वाला तल होता है, इन्फीरियर वॉल, उसका अगर खून की नली बंद हो जाए, इन्फीरियर वॉल इन्फॉक्शन हो जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए, उस स्थिति में भी पेट में दर्द हो सकता है। फेफड़े में अगर कोई इन्फेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, प्लूराइटिस होती है, वो भी नीचे दर्द करा सकती है। कई बार रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां होती है, कोई नस किसी ट्यूमर की वजह से दब रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है नस में, जैसे कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ऐसी स्थिति में शुरुआत में बहुत सीवियर दर्द मरीज बताता है अपने पेट में, लेकिन बाद में देखने में आता है कि वो उसमें छोटे छोटे मकड़ी के दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं, जिसे मकड़ी भी बोल देते हैं अपनी ग्रामीण भाषा में। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं।
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का गाना। तो डॉक्टर साहब बताइए, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: रविंद्र, किसी पुरानी अच्छी मूवी से कोई प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए जो अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया हो।

0: प्यार पूजा है, प्यार आराधना है। श्रोताओं, प्यार की परिभाषा करना बहुत कठिन है ना दोस्तों, पर प्यार के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं।
1: और देते प्यार।

0: प्यार से दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: डॉक्टर साहब, इस प्यार भरे गीत से पहले आप गंभीर बीमारी के बारे में बता रहे थे, लेकिन सामान्य दर्द क्या होता है?
2: ऐसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, इन्फेक्शन माइल्ड सा हो जाए, आंतों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी दर्द होने लगता है, अपाचन हो जाए, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी दर्द होने लगता। नॉर्मली ये साधारण दर्द भी किसी न किसी बीमारी की वजह से ही होते हैं, या तो इन्फेक्शन होगा, या उसमें कोई ट्यूमर होगा, या उसमें किसी नस का दर्द हो रहा होगा। पूरी आंतें घूम रही, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स भी उसी में है, उसी में हमारा आमाशय है, इसी में पेशाब की थैली है, ऐसे सब अंग हैं। इन सभी अंगों में कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है और उसी से सामान्य दर्द भी होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, भोजन करने के बाद क्या टहलना बहुत जरूरी है?
2: जी देखिए, भोजन करने के बाद अगर आप टहलेंगे तो कुछ समय आप जो पाचन क्रिया के लिए आपको मिलेगा, और खाना कहते हैं टहलने से अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है खाना।
1: जी जी।
2: तो हाँ, नेचुरल है, टहलना चाहिए। जो सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिससे कि टाइफाइड होता है,
1: जी जी जी,
2: क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया नाम का होता है, ये सब बाहर के खाने में मिल जाते हैं, उसमें बढ़ रहे बढ़ोतरी करते हैं, वहां से इन्फेक्शन होता है और वो पेट में जाकर के अभी लूज मोशन, पेट में दर्द, बुखार, ये सारे ये इसी मौसम में होते हैं। अभी
1: अक्सर हमारे कुछ श्रोता कहते हैं कि पेट में ऐठन है, ये ऐठन क्या होती है?
2: ये स्पाज्मोडिक पेन होता है, पेरिस्टाल्सिस। आंत क्या है, हमारी चलती रहती है
1: जी।
2: तो आंत एक जगह चलती है, फिर आगे फिर चलती है, कभी भी कहीं सूजन आएगी आंत में अंदर या जख्म बन जाएगी, तो आंत जब चलेगी या उसमें रुकावट आएगी तो जितनी देर के लिए आंत सिकुड़ती है तो उसमें दर्द होता है, सिकुड़ के वो ढीली पड़ जाती है तो दर्द कम हो जाता है। तो ऐसे ऐठन का दर्द पेट में होता रहता है।
1: गैस क्या होती है, पेट में क्या कारण होता है?
2: देखिए, गैस एज सच कुछ नहीं होता, हमारे पेट का एक निश्चित पीएच है, 2 से 4 पीएच होता है हमारे पेट का।
1: अगर पीएच क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: पीएच अम्लीयता या क्षारीयता को बताते हैं, मतलब तेजाब, जो आप देखते हैं बैटरी में तेजाब होता है।
1: जी जी जी, अच्छा,
2: तो तेजाब है बैटरी में, वो तो है अम्ल यानी एसिड है, और जो साबुन है वो क्षार है।
1: अच्छा जी जी,
2: तो उसका इनको कितना कि उसमें तेजाबियत है और कितनी उसमें क्षारियत है, कितना, तो इन दोनों तेजाब और क्षार दो होते हैं, इन दोनों का जो माप करने की चीज होती है वो पीएच होती है, तो पीएच इस तरह से निर्धारित करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पेट का पीएच बहुत कम रहता है जिससे कि खाना को डाइजेस्ट किया जा सके, अंदर गए हुए जितने बैक्टीरिया हैं उनको मारा जा सके। लेकिन अगर ये पीएच किसी वजह से और घट जाता है तो भी अल्सर हो सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम ऐसी कोई भी चीज लेंगे जो कि अम्लीयत ज्यादा कराएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जख्म बन जाएगी, अल्सर बन जाएंगे और पेट में दर्द हो जाएगा।
1: अच्छा, पेट दर्द से क्या गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं?
2: ये पेट दर्द एक बिल्कुल साधारण सी बीमारी, जैसे कि पेट का अल्सर है या पेट का नॉर्मल इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, ये भी हो सकता है। गंभीर बीमारियों की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक की बात हमने कही है, अगर किसी को ऊपर पेट दर्द हो रहा है, कभी कभी पेट दर्द के मरीज कहते हैं मुझे गैस बहुत बन रही है, उनका बीपी देखते हैं, बीपी 200 होता है, उनको जब हम दिल के लिए चेक करते हैं देखते हैं हार्ट अटैक पड़ा हुआ उनको, लेकिन वो था क्या, पेट का दर्द था, जिगर खराब हो जाता है, लीवर जिसको वो खराब हो जाता है, फेफड़ों में पानी उतर आता है, हार्ट भी कमजोर पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पेट मरीज का बहुत ज्यादा फूलने लगता है, लैट्रिन पेशाब सब रुक जाता है, तो इस तरह सारी चीजें उसमें हो जाती। इसी तरह से अगर हम गुर्दे का इन्फेक्शन देखें तो गुर्दे में पाइलोनेफ्राइटिस होती है या यूरोसेप्सिस जिससे हो जाती है, गुर्दे में पस पड़ जाता है,
1: जी जी,
2: रुकावट हो किसी तरह नली में तो वो भी यूरोसेप्सिस करा देती है, यानी सेप्टिसीमिया हो जाता है और मरीज गंभीर होने लगता है। आंत की नली को जो खून सप्लाई करती है उस खून की नली में थक्का चला जाए, मीजेंट्रिक इस्कीमिया हो जाए, उस स्थिति में भी पूरी आंत काली पड़ जाती है, मरीज की जान को खतरा बन जाता है। इसी तरह से आंत उलझ जाए, रुकावट हो जाए उसमें, जी जी, तो भी जान को खतरा हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है जिनमें मरीज को आईसीयू की जरूरत पड़ती है, बीपी बढ़ाने की दवाइयां देते हैं, गुर्दों को सपोर्ट करने की दवाइयां लगाते हैं, इस तरह बहुत सारा मल्टी मोडलिटी इलाज उनको

0: जरूरत पड़, लेकिन साथ ही साथ क्रिटिकल केयर की भी बहुत सख्त जरूरत उनको पड़ जाती है और ऐसे मरीजों को ऐसे अस्पतालों में ही जाना चाहिए जहां क्रिटिकल केयर की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है, सारी मशीनें उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी पेट दर्द के बारे में, और सभी स्वस्थ रहें हम ये कामना करते हैं। डॉक्टर साहब आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आज
0: जो आपकी पसंद का गाना हो रविंद्र जी।
2: आइए सुनते हैं हम सब मिल करके ये

हे मेरे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि मन की शक्ति प्रबल हो, अज्ञानता का अंधकार दूर हो, जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो।

0: मन का विश्वास कभी कमजोर न हो, इसी आशा और विश्वास के साथ रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
1: मन का विश्वास कमजोर होना।
2: SR इंस्टीट्यूशन नागपुर भुता बरेली।
3: SR इंस्टीट्यूशन नागपुर भुता बरेली से करें।
2: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
3: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
2: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
3: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें। डी फार्मा और बी फार्मा। SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें।
2: BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
3: SR इंस्टीट्यूशन नागपुर भुता बरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
2: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: संपर्क करें 9720456885।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत

0: मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का। और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
1: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
0: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई, और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित श्यामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: मुंबई में, और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

104 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त नीतू। तो चलिए देरी न करते हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और आप सभी के नामों को भी शामिल करते हैं। और पहला गाना प्रोग्राम का, फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या, आवाज है उदित नारायण की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, जन्नत, मन्नत, प्रियंका, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, और ये हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप और इनका पूरा परिवार, बागपत उत्तर प्रदेश से।

संजय ढिंगिया, नमन और अपार, राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखन, सावित्रीबाई पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से और पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह वीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा यूपी से, विपिन कुमार, सपना शाक्य, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र शाक्य, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु अर्णव, सत्यम बोर्नागाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी। ये हमारे श्रोता, उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया है, बस नाम ही लिखा है। और ये हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से हैं नदीम भाई और बहजोई और राजू। तो ये सब आप सभी श्रोता गाने को सुनना चाहते हैं। जिला नादेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम कुमारी दुर्गेश्वरी और इनके परिवार के सदस्य, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। सब्जी मंडी कस्बा उसामा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश करिश्मा और मुस्कान, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस, सोफिया, बीजना मुरादाबाद से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि, मंडी सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, अच्छापुर ग्राम से इकबाल रजा, जीशान अफजल, मोनिश सादिक और इनके परिवार के सभी सदस्य, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरा, सैयद निजामुद्दीन, धोता जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, चरडोगरी पिप्रिया, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय जयकिशन, इन कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल और दिशानी निमित आहूजा, गांव लोडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर, भुवनेश्वरी देवी, करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी, महेशपुर खे मुरादाबाद से तौफीक अहमद, सिद्दीकी अतीक अहमद, मोहनित मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, निसार अहमद अंसारी, निसार अंसारी, नुसहत फातिमा, अब्रार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने, दानिश अंसारी और पप्पू भाई अंसारी नाज रेडियो क्लब करेली से हैं, जिशान वारसी संधौली मीरगंज से, इमरान शेख, रेहान जिशान, करुला मुरादाबाद से, अयूब खान, इरम गुड़िया, गांव वाराणसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्राइड जोड़ा। और अब आप सभी की पसंद का गाना प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और स्टूडियो की घड़ी में 10:11

मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आपके नामों को शामिल करते हैं और आपके पसंदीदा गानों को भी। कस्बा सेंट्रल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ मोहम्मद, अजहान अंसारी, अलमीर बश्वर अंसारी। और गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा, हिना कौसर।

और ये है हमारे श्रोता कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा अभय और इनके परिवार के सदस्य, नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने, हरी हाजी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने, ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी, भैड़ी से अंजुम भाई खालदा बेगम और इनके परिवार के सदस्य, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवंगत, दुर्गा पूना और कृष्णा, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा, कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव अमेंद्रपुरी गोस्वामी और कल्लू, साथ ही मानपुर साबिर जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, जिला मुरादाबाद दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ग्राम दुलापुर यूपी मुरादाबाद से हैं। ये हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा और अभिषेक नामदेव, हर्षित, ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मुईन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, कस्बा उगैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनके परिवार के सभी सदस्य। गंगवार रेडियो सरोता श्रोता संघ दलपतपुर से है ओमकार, ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और इनके मम्मी पापा, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल जैवी, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज और साहिल बिट्टा बजाज, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली, युवान और आरके राजा, पारसमणि रेडियो श्रोता संघ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफो, नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और तेजपाल सिंह, प्रजापति अनुराधा, शमा शिवी, मधुबाला प्रजापति, चिट्टा मंदिर रोड यमुना नगर से कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दिशांत मिरी बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, वासुदेव अनीता, रमेश राव गाठोड़े, चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम, सत्यार्थ और ईवी चकमाच, एमडी अनूपगढ़ से मंगल जनांगर, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जयनांगर। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम कामचोर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब बारी अगले गाने की और साथ ही आप सभी श्रोताओं के नामों को शामिल करने का भी समय है। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव अनीता रमेश राव, चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा, मधु सत्यार तरीवी, चकमाच एमडी अनूपगढ़ से मंगल जनांगल, रोशनी अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील, नारायण खांडे रजनी तुषार समीर, मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से, मछली गोदाम क्यादीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा और ऋषभ, भाटापारा देवरी से केआर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुली क्षत्रिय, शाजी नगर देलूलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका, महेंद्र मोदी ठाकुर रामगढ़ कैंट से हैं, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और विद्या कुमारी, नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चौरदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, गाड़ीखाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू, नितिन, सावन, सचिन और शक्ति, गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा, कृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल शर्मा गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से है, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम और आशीष, प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन देव, प्रियाल गुप्ता, कार्यव गुप्ता, शनि बाजार कस्बा उघैती से हैं, सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका, पुनाविले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुरानेश्वर बरेली से जमुना प्रसाद, किरण दृष्टि और मानवी, ग्राम दलपुरा तहसील फरीदपुर बरेली से पातिराम दिवाकर, सूरजमुखी, खुशबू, प्रियांशी, मानसी, अक्षरा, सुशांत, ये हैं हमारे श्रोता। आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव, राधे ढिंगरा जो कि पंचकुला सेक्टर 9 से हैं, सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गुडाने, हीरामणि, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से, गनगोला दातागंज से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन, शहबाज, सैफ, ईशान, आजम खान और अरहान, राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार, माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति, महेश कुकरेजा, संध्या, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और इनका पूरा परिवार, ये है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, नारायण लाल साहू, कुलवंतीन साहू, देवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा, मिलिंद, प्रणय, रुद्रांश, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से हैं, साथी जुनवानी, स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, सुरीत, रमेश साहू, तारा, विद्या, जितेंद्र, किशन, सुनीता, नीलकंठ, हीरेंद्र, संजीवन, लोककुमार और रंजीत सिंह साहू, नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, माटापरा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। और अब बारी उस गाने की जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं, आप सभी की पसंद का, फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसमें आवाज आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा की।

साथ बने। और साथ ही इस गाने को गाओ हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा भी सुनना चाहते हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और आपकी पसंद में आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, आप फेसबुक पेज पर आकाशवाणी के जाइए और वहाँ पर कमेंट के माध्यम से हमें अपनी पसंद का गाना भेजिए, ताकि हम आपकी पसंद के गाने को आप तक पहुँचा सके। और 10:30 हो चुके हैं, यानी कि आधे घंटे का जो सफर है वो अभी बाकी है। तो चलिए इस सफर को पूरा करते हैं आप श्रोताओं के नामों के साथ। डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत, उदित, अभय, दीक्षा और थाने के सामने अलागंज जिला शाहजहांपुर से है। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, कोइनी रेडियो श्रोता संघ गुगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान अब्दुल गफ्फार खत्री और इनके परिवार के सदस्य, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से है विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल और पूजा परिहार, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि कारवा, बालासाहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय बीर।

शहर महाराष्ट्र से हैं। कबनूर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण भामिष्टे, राहुल और अनीता भामिष्टे। साथ ही मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनवाज शहनाज, नवेद हसन रसीद, सुहेल हसन अब्बासी अनम और यशफ। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बास और इनके परिवार के सदस्य। पटेलनगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। करगैना बीडीए मंदिर से हैं ये हमारे श्रोता। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। गीसू दिलावरे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता। सौरभ कुणाल दिलावरे राजपुर एमपी से हैं। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मुड़त, नेहा, दीपक, चेतन नहटा। और फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध, सलोनी संजू, लल्ला चौरसिया। नवाबगंज कानपुर से सुजाता, पंकज, पीहू, दिया चौरसिया, सरिता और आगरा बादी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। विष्णु मिस्कीन, ऋतिका, वानी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी और सोनी। ये है हमारे श्रोता। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। मौर्य बस्ती सुखरा बरेली से हैं राम गोपाल मौर्य, सुनीता कृष्णा पायल मानसी। और नाले के पास सूर्या वेंकट हॉल से सत्यप्रकाश प्रजापति, मन्नू खान जी। पीलीभीत ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा से एके राजपूत, अनिल भगवान दास, रवि कुमार, नवनीत, खुशी, संतोषी, प्रिया, देवराज और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ, ललिता, संजना, गणेश खडसे, देविका, कार्तिक, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, अमित कुमार, उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम कभी हाँ कभी ना।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद, और ये गाना अब आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है साथी, और इसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की। इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमांश। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद और सुजान। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। गांव कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर और सुनीता करमकर। कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत, मोहम्मद इंतजार। गांव भोजपुर तगा चुलकाना सहारनपुर से। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निमान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा।

मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल, विनीता, मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल, लक्कड़ बाजार, खंडवा से। ये है सनावत से शेख मुसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना, राज पैलेस मऊनाथ, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा से मुन्ना भाई स्वर्णकार और पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू, ग्राम देवगांव, तहसील पूना, महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया, बंटी और इनके परिवार के सदस्य, सुमित्रा मेहर, ईश्वर लाल मेहर, रेहांश, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, गांव भटूनी, जिला मंदौर, मध्य प्रदेश से, कवर कॉलोनी बड़वा, जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से। ये है जसवाड़ी, जिला खंडवा एमपी से, गांव बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, और ये है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला और बानी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी वैदही, हंसिका, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम साथी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब बारी अगले गाने की और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य लदावली जिला मुरादाबाद से, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी, मदरसा गेट भावपुर मुड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कमरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, सिहरा जिला बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नवाजे शेख, दानिश और अमन अफरीदी, रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, कीर्ति, सिद्धार्थ वर्मा, प्रियांशी वर्मा और इनका पूरा परिवार बस स्टैंड हनुमानगढ़ फाजल का पंजाब से। ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक और मीका विरक, आकोर से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, पवन जरिए और शुभम के अलावा संजीव डाबेराव। ये है पैराजादा मिराज उद्दीन जो कि सलार पहलगाम कश्मीर से, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार के सदस्य, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना, कल्पना, मनी कुमारी, चांदनी और नंदिनी। और आप सुनते हैं आप सभी की पसंद का एक गाना जो कि है फिल्म का नाम है जब तक है जान, हर्षदीप कौर की आवाज़।

जब तक है जान इस फिल्म से आपने गाना सुना हर्षदीप कौर की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद, और अब समय हो चुका है 10:54 और 3 सेकंड। और हमारे आप सभी श्रोता ये गाना सुनना चाहते हैं जो कि है फिल्म रोमांस से लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज़, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान, ये हैं जिला खरगोन सनावत से, मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान, वेदराम कश्यप, राजवीर, रवि, मनोज, दुलेराम, मुनीश, भूपराम, गोपाल, बाबू कश्यप, रामवीर कश्यप, अरविंद, दयाराम, मनीराम, झामन, मनी और इनके परिवार के सभी सदस्य ग्राम करेली जिला बरेली से हैं। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष, साथ ही गार्ड के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक, बनवारी लाल कुशवा, मंजूलता, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवा, रामानंद, उनके परिवार के सभी सदस्य चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, जैस जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, रुपेश संगई, महेश, प्रग्रेश, प्रीतेश और इनका पूरा परिवार, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, राजिया, सुल्ताना अंसारी और इनका पूरा परिवार, गांव टुरवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी, सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फरेश कुमार, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मंगलिक, आकांक्षा और माही मलिक, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से, और ये हैं अमन और दीपांशु, जयराम खोरवाल, सचिन, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी और रविंद्र सिंह छाबड़ा।

इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं। साथ ही एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण लव्या अरव और एसके पप्पी। साथ ही भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा प्रधान, राहत अली, वकील अहमद। ये हैं गुजरात पाटन से धीरज बी रावरी, सरोचा कमरावती से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आफिया और इनके परिवार के सदस्य। और आप सुनते हैं ये गाना लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज रोमांस फिल्म से।

साथ ही इस गाने को पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र सीमा, अनमोल और साहिबा भी इस गाने को सुनना चाहते थे। राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धनवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, जरी कारीगर, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल, संजीव, कस्बा, क्लुलड़िया, नवाबगंज, बरेली से भी इस गाने को सुनना चाहते थे। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने भी इस गाने को सुनना चाहा।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली से, और अब समय है कार्यक्रम सबरंग का। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग।
1: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
2: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दी ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
1: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
2: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
1: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
0: और अब सोनू निगम की आवाज में सुनिए ये भजन।

0: है और टूटा हुआ हूँ मैं, वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ मैं।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली सबरंग, और अभिजीत सावंत की आवाज में ये गाना सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है कार्यक्रम झुमका गिरारे का। तो चलिए सुनते हैं झुमका गिरारे।

नमस्कार बरेली, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरारे में। श्रोताओं, आज तारीख है 11 जून और आज का कैलेंडर बेहद खास और खूबसूरत पन्ना हम सभी के बीच लेकर आया है, जिसे हम मनाते हैं राष्ट्रीय जीवन को सुंदर बनाने का दिवस, यानी कि नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे। वैसे जब भी हम सुंदर शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान चेहरे की खूबसूरती या बरेली के मशहूर झुमके की ओर चला जाता है, लेकिन भाई जिंदगी चेहरे की क्रीम से नहीं बल्कि खूबसूरत रिश्तों और छोटी छोटी नेकियों से सुंदर बनती है। तो आज के इस 15 मिनट के सफर में हम चार दीवारी से बाहर निकले हैं, बरेली के लोगों से जानेंगे कि किस तरह भागदौड़ की जिंदगी उनको खूबसूरत बना देती है। बहुत ही मजेदार बातें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन सफर की शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमे के साथ। तो चलिए आप भी मिलकर सुनिए और महसूस कीजिए।

0: कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: सूरत बना रहे हैं जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम ओवैस
1: जी। किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं? क्या दूसरों के चेहरे पर स्माइल आते हैं?
2: हाँ मैम, दूसरों के चेहरे पर स्माइल आते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे उनकी मदद करना है, जितना हो सके उतना करते हैं हम उनके लिए, ताकि उनके चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल आ सके।
1: और आपके चेहरे पर स्माइल कौन लाता है? क्या वही लोग लाते हैं?
2: वही लोग, जब उनके चेहरे पर स्माइल आती है तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक खुद ही स्माइल आ जाती है।
1: जी, इस समय आपके दोस्त भी साथ हैं तो आपकी भी मदद करते हैं आपके मुश्किल हालातों में?
2: हाँ, ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कभी कोई परेशानी आती है या कभी कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, ये बंदा मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है।
1: जी, आपका नाम?
3: मेरा नाम नदीम है। और
1: नदीम, किस तरीके से हेल्प करते हैं आप?
3: मैम, कभी इनको जैसे रात में, मतलब दिन में कभी भी ऐसे कोई मदद पड़ गई, जैसे गाड़ी में पंचर हो गया या फिर बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, तो मुझे कभी कॉल करते हैं, मैं तुरंत आ जाता हूँ इनके पास और जितना हो सकता है मैं इनकी मदद कर देता हूँ।
1: इसी तरह से आप अपने दोस्त की मदद करते रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। खूबसूरत बनाने का राष्ट्रीय दिन है, चलिए जानते हैं बरेली के युवाओं से कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं या फिर कोई दूसरा पर्सन उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। जो आपका नाम?
4: अभिषेक।
1: अभिषेक, जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में जब आपके हालात मुश्किल होते हैं लाइफ में, तो क्या सपोर्ट के तौर पर कौन आपके पास खड़ा होता है?
4: जी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम है सुमित
1: जी,
4: जो भी जब भी मेरा बर्थडे जाता है तो मैं उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मेरा काफ़ी दिमाग को रिलैक्स मिलता है उसके साथ रह के बातें करके
1: जी,
4: इस तरीके से।
1: कभी भी आप कॉल कर दें 24 घंटों में वो पिक भी कर लेते हैं?
4: हाँ, पिक कर लेता है
1: जी। यही आपके दोस्त?
4: नहीं, यही योगेश
1: जी। तो आपके वो भी आपसे मदद लेते हैं?
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा बात करें तो जिंदगी में जब आप सुबह सोकर उठते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, तो आपकी मदर भी क्या आपकी हेल्प करती हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल करती हैं।
1: किस तरीके से?
4: उठाती हैं, धोती हैं, जो भी हैं, दिक्कत परेशानी पूछती हैं, वैसे क्या दिक्कत है,
1: तो आप उनको थैंक यू कहना चाहेंगे?
4: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कहता हूँ
1: जी। आपका भी शुक्रिया। खूबसूरत बनाने का राष्ट्रीय

0: किस तरीके से बरेली वाले अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन है, इंसान है या फिर कुछ और? जी आपका नाम?
1: मेरा नाम आमू है।
0: जी आपके हाथों में चाय का कप देख रहे हैं, तो आपकी जिंदगी का मुझे लग रहा है अहम हिस्सा चाय है।
1: चाय, हाँ, चाय के खूबसूरत बनाने वाला अपना दोस्ती।
0: जी तो चाय पीने के दौरान आपके दोस्त भी आपके साथ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं?
1: मेरे दोस्त भी मेरे साथ में आते हैं चाय पीने के बहाने में। हाँ, चाय एक बार
0: काफी बातें भी होती है,
1: एक दूसरे का मतलब सुख दुख भी होती है,
0: तो आप लोग शेयर करते हैं और जिंदगी अच्छी बन जाती है,
1: जिंदगी हम लोग का अच्छी बन जाती है।
0: शुक्रिया आपका। जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाए? जी आपका नाम?
2: मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी पारोल है।
0: जी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का आज जो राष्ट्रीय दिन है, उसके बारे में आपके क्या विचार है?
2: उसके बारे में यही विचार है कि परमपिता परमात्मा हम सभी को बताते हैं कि हम सभी सृष्टि पर परमात्मा की एक सुंदर रचना है और एक फूल है, पर इस फूल को हमें खुशबूदार फूल बनाना है। और आज सब मानव फूल तो हैं, पर उनमें दिव्य गुणों की खुशबू की कमी है। तो जब हमारे अंदर में दिव्य गुण आएंगे, जैसे पवित्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, धैर्यता, तो ये गुण हमारे अंदर की फूल की खुशबू को बढ़ाएंगे और इससे हम सभी का जीवन एक खुशबूदार फूल की तरह हो जाएगा।
0: जी आपने बताया कि पवित्रता, दया, करुणा और ये सारे गुणों की वजह से बाह्य जो सुंदरता है अपने आप आ जाती, आंतरिक सुंदरता का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में कैसे ये गुण आए? क्या हमें किसी की सेवा करते रहना चाहिए?
2: नहीं, ज़िंदगी में ये गुण तब आते हैं जब हम उस गुणों के सागर से जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे हमें कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, उसी तरह हमें राशन चाहिए तो राशन की दुकान पर जाते हैं। तो अगर हमें जीवन में गुण चाहिए तो परमपिता परमात्मा जो कि इन गुणों का सागर है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसके ध्यान से उसके गुण हम सभी के अंदर आ जाते हैं और हमारा जीवन भी गुणवान बन जाता है।
0: जी आपका शुक्रिया। जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने बात करते हैं कि आंतरिक गुण होना चाहिए तो बाह्य सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाती है, तो आंतरिक सुंदरता को सुंदर बनाने के लिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करें और हमारा आंतरिक मन सुंदर बने?
3: हमें अपने आप को अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें लेकर के खुश रहना है, हर्षित रहना है
0: जब जिंदगी में,
3: और जिंदगी में छोटी छोटी बातें हम किसी की दया करें, किसी की भला करें, किसी का काम कर दें, तो हमें उसमें खुशी मिलती है। प्यार करने से खुशी मिलती है, देने से खुशी मिलती है, लेने से खुशी नहीं मिलती है।
0: आपने बताया कि खुश रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी में रोज़मर्रा की जिंदगी में कोई ऑफिस जा रहा है, घर के काम, काफ़ी दुखी हो जाता है छोटी छोटी बातें, तो इसको कैसे दूर किया?
3: दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि अपना नॉलेज नहीं है। जब अपने आप में जान लेगा कि मैं एक बहुत अच्छा भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे बनाया, मुझे खुश रहना है, जब ये जीवन में आ जाएगा तो हमेशा हर कार्य करते खुश रहेगा। और ब्रह्मा कुमारी यही सिखा रही है। हमारे यहाँ आज हमारी जैसी ब्रह्मा कुमारी बहनें 50,000 हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व के अंदर सेवा दे रही है। ये मॉरल वैल्यू सिखा रही है, जीवन को हंसना खेलना सिखा रही है कि व्यस्त रहते भी आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे जीवन बनाना है। तो हम सबको एक आदर्श बन सकते हैं और हमारे परिवार के परिवार जीवन को अच्छा बनाए, तनाव मुक्त बना रहे, खुशनुमा जिंदगी बना रहे हैं।
0: बिल्कुल जी आपका।
2: ओके, थैंक यू।

0: हम।
1: तो बरेली वालों, जो काम सालों से रुका है उसे आज ही कर डालिए। किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ले आइए और चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ अपने कदमों को थोड़ी सी रफ्तार देते हैं और सुनते हैं हमारी और आपकी पसंद का ये एवरग्रीन गाना

0: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आप सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS

0: कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है। चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स

0: ने किया है और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 इयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। Last year, we started exporting railway propulsion technology to Germany, France.

0: स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है प्रधानमंत्री जी का, जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं, एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था। उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है। इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये। इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग

0: क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नेस्कॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है, आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे, तब हम

0: भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है, इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन, देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम, वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ,

0: गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चुक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल की लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने का बात तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो

0: नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एफएम रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से।

और अक्सर लोग पूछते नजर आते हैं कि भाई आपका क्या होगा, भाई मेरे तो बहुत बुरे हाल हैं, गर्मी इस कदर है, ये है वो है, लेकिन सच में लोग इतना परेशान हैं, इतना बेहाल हैं और पसीना पोंछते नजर आते हैं, घर में जाते हैं तो देखते हैं और मान लीजिए अगर लाइट चली जाए या मान लीजिए आपको कहीं से ठंडक का एहसास ना हो तो मूड इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि बस उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अच्छी बात भी बुरी लगती है, मतलब कोई अगर प्यार से मुस्कुरा भी रहा और भाई इतने दिनों बाद तो मूड नहीं बनता कि आप कहें कि हाँ हाँ ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये गर्मी, ये उमस, ये कब जाएगी, कब जाएगी। और घर, घर एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि जब इंसान थका हुआ आता है, बहुत टेंशन से आता है या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस उसको परेशान कर रहा है, वो कहता है भाई आप जल्दी से घर जाएं, घर में जाके जो सुकून का एहसास होता है ना वो कहीं और नहीं होता। लेकिन भाई देखिए गर्मी है और गर्मी गर्मी गर्मी है, अक्सर ये लोग कहते हैं इतनी गर्मी पड़ी, आज से पहले इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, लेकिन लोग भूल जाते हैं जाड़ा आता, लोग कहते हैं इतना जाड़ा पड़ा, आज से पहले इतनी ठंडक तो कभी पड़ी ही नहीं, बारिश होती, लोग कहते हैं आज से पहले तो इतना कुछ हुआ ही नहीं, और फिर हम लोग भूल जाते हैं और फिर जिंदगी अपने जो मामूल है ना उस पर चलना शुरू हो जाती है, यानी जो जिंदगी है उसको जो जीने का तरीका है, उसको जो जीने का ढंग है वो तो आपको भले बदलना होगा, लेकिन लोग से अगर आप ये कहिए, लोगों से कि भाई जिंदगी को जीना छोड़ दें तो कैसा है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, घर जो है ना वो घर ही होता है, घर जो है वो सुकून अलग ही देता है। अब गर्मी का मौसम है, पूरे जोरों पर है, तेज धूप, बढ़ता हुआ टेम्परेचर और गर्म हवाएं, वैसे कल से थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं, ये जो गर्मी है, ये हमारी सेहत को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे घर को भी काफी हद तक असर पहुंचाती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि गर्मी में घर की देखभाल कैसे करें ताकि हमारा घर एकदम कूल, एकदम ठंडा, साफ सुथरा और एकदम सुरक्षित भी बना रहे, ये भी बहुत जरूरी है। अब कहते हैं ना कि घर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना है, ये सिर्फ मकान नहीं है बल्कि हमारी खुशियां और सुकून का आशियाना होता है, इसलिए उसकी देखभाल हर मौसम में जरूरी है, खासकर आजकल के मौसम में, गर्मियों में। तो सबसे पहले बात कर ली जाए, भाई देखिए अपने को तो हम लोग ठंडा कर लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, बेल का शरबत है, कुछ भी ठंडा पानी है, लेकिन घर को कैसे ठंडा रखा जाए, ये एक सवाल है कि घर को कैसे ठंडा रखा जाए, और वो भी गर्मी के दिनों में, दिन के वक्त खिड़कियां, दरवाजे, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको मोटे मोटे पर्दे डाल देने हैं, इतने मोटे पर्दे कि जो धूप की तपिश है ना वो अंदर तक नहीं आने पाए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या है कि कुछ ऐसे कलर रख लिए जाए, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब उठा के पूरा कमरे पेंट करवा लीजिए ना, कुछ ऐसे कलर घर में उस कमरे में रख लिए जाए जहां पर आप आराम फरमाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे सूदिंग कलर जैसे कि लाइट ग्रीन है, जैसे कि लाइट पिंक है, उस कलर के कुछ चीजें ऐसी सजा ली जाए जो आपके दिल को सुकून दे, आपको ठंडक पहुंचाए, और साथ ही साथ जो आपके घर का जलवा है ना वो ऐसे ही, एकदम ऐसे ही बना रहे। फिलहाल शो मी योर जलवा आप तक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, ऐसी अदा होनी चाहिए आपके घर की कि लोग फिदा हो जाएं। अब जैसे हमने आपसे बात करी कि भाई एक एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी हरियाली नजर आए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया को हरियाली देना पसंद करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको हरियाली जरूर नजर आएगी। अब जैसे कि अगर बात करें ग्रीन लुक देने की, तो बहुत ही सिंपल सा अगर आप डेकोर करते हैं ना, तब भी जो आपकी बालकनी है ना वो बहुत ज्यादा खिल उठती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वॉल डेकोरेशन आपने किया, उसके साथ साथ जो बाकी स्टेयर्स हैं उनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। जब सीढ़ियों से इंसान चढ़ के जाता है छत पे, फिर छत से उतरता है, खटखट खटखट खटखट खटखट नीचे आता है, और लास्ट में जब आप साइड में देखते हैं सीढ़ियों के साइड में हरियाली अगर नजर आती है, यानी एक हरियाली से भरा हुआ कोई चीज आप ऐसी लगा देती हैं, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन एक गुड लुक देती है, एक गुड फील कराती है आपको। और इसके लिए क्या है ना कि जो सेंटर है उसमें आप अगर ग्रीन इंडोर प्लांट से पूरी जो स्टेयर केस है उसको आप अगर लगाते हैं, तो जो आपके स्टेयर केस है ना उसको पिक्चर परफेक्ट लुक मिलेगा। अब चलिए थोड़ी सी सजावट की बात भी कर ली जाए। जाहिर सी बात है कि हरियाली की बात हो गई, बैठने की भी बात करते हैं, सिटिंग एरिया की बात करते हैं, या फिर बालकनी में अगर आप बैठते हैं तो फिर वहां पर अगर आप केन फर्नीचर रखते हैं तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का सा है, आप उठा के उसको कहीं पर इधर से उधर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो दीवारें हैं, जो वॉल है, वहां पर आप छोटे छोटे फ्रेम्स लगा सकते हैं, एक हिस्से को जैसा कि हमने आपसे कहा ग्रीन लुक दे सकते हैं। सिंपल डेकोर से जो आपकी बालकनी है ना वो बहुत ज्यादा खिल उठेगी। छोटे छोटे आपने फ्रेम्स लगा दिए, दो अलग अलग साइज के फोटो फ्रेम्स लगा दिए हो तो एक बड़ी फोटो फ्रेम को लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर और छोटे नीचे फ्रेम लगा दीजिए, और अपनी जो खूबसूरत सी पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है, उसको भी इसमें आप

लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आर्ट भी आपकी जो आपके दिल में आ रहा है कि भाई थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी दिखा दें, और बाद में जब आप ठंडी सुकून बैठती हैं, कोई भी चीज़ का शरबत पी रही हैं, चाय पी रही हैं, तो फिर आप देखती हैं, अच्छा ऐसे लगते थे, मेरी शादी हुई थी तो ऐसे थे, इनके पापा ऐसे थे, मेरे बच्चे ऐसे थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आप देखती हैं तो एक अलग सुकून होता है, एक ठंडी सांस इंसान भरता है। देखिए ठंडा की बात आई ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप शामिल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रेम कलर और जो मटेरियल है, दोनों जो हैं वो आपके रूम के जो डेकोर है उसके अकॉर्डिंग हो, तभी अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि तरन्नुम ने आज कहा कि भाई जितने भी आपके एल्बम में फोटो लगे उनको निकालिए, फ्रेम में लगाइए और पूरी दीवारों को सजा दीजिए। थोड़ा सा अच्छे से आप देखिए। अगर आपको बहुत ही लाइट कलर पसंद है तो आप उस तरह के फ्रेम ले सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि मिक्स एंड मैच वाला भी ज़माना है। अब स्टेयर्स में वॉल गैलरी की बात कर लेते हैं। स्टेयर्स की वॉल्स की डेकोरेशन में क्या होता है ना कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। कुछ बातों का आपको देखिए ध्यान रखते हैं ना, तो आपका जो घर का ये वाला जो हिस्सा होता है ना वो एकदम यूनिक बन जाएगा। जैसे आपको क्या करना है कि जो बड़ी पिक्चर है उसको स्टेयर केस के सेंटर में हैंग कर दीजिए आप। इससे क्या होगा, जो फोकल पॉइंट है ना वो क्रिएट होगा। आखिर घर का जो कोना है ना वो एक कैनवस ही तो है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे घर में सीढ़ियाँ बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ कम हैं या छोटी हों तो आप साइड की जो वॉल्स है उसमें एकदम समान जो शेप वाले होते हैं ना छोटे छोटे फ्रेम्स, उनको आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक सिमेट्री दिखेगी। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे जहन में आ रही हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर कर दें तो आज तो पक्का नहीं। तो अभी देखिए जून में छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दिनों तक आप अलमारी में या कहीं पर सहेज के रखे हुए हैं, उनको निकालिए, थोड़ा सा लव दीजिए उनको। बच्चे भी आपके साथ काम कराएंगे, कोऑपरेट करेंगे आपको, बच्चों को भी तमीज़ आएगी कि हाँ घर को कैसे सजाया जाता है, कैसे संवारा जाता है, और आपका जो बसेरा है ना वो सबसे हट कर नजर आएगा। फिलहाल लव मी थोड़ा और ट्रैक आप तक 12:25 प्रोग्राम शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: हो रे खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में,
2: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
3: जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
2: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
4: ओ गॉड,
0: स्टे ट्यून टू चैनल सतरंगी रे।
5: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7
6: जिंदगी बहुत कीमती है,
7: उससे तो सस्ता ही है।
8: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
10: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 12:47 हो चुके हैं और सच में वक्त यहाँ पर आकर बिल्कुल पता नहीं चलता है। मतलब घंटे जो है ना वो ऐसे लगते हैं जैसे ऐसे सेकंड्स जो है वो बीत गए हों। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। घर सिर्फ एक छोटा सा है, यानी GHAR घर, या फिर अगर आप हिंदी में कहें तो घा और घर, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर एक चीज भी आपने मिस कर दी,

चीज पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर भाई बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब देखिए सजावट की बात हो गई, लेकिन अब गर्मी है, ये बिल्कुल मत भूलिए कि गर्मी से हमने बात शुरू की थी। और गर्मी में क्या होता है ना कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी तो भाई कहीं ना कहीं जाएंगे, तो घर में तो आएंगे भाई, आपके भी घर में आएंगे, मेरे घर में भी आएंगे, अब गर्मी उनको भी लग रही है। अब ऐसे में क्या है, मच्छर हैं, मक्खियां हैं। देखिए मक्खियां समझ में नहीं आता आ कहां से जाती हैं, इधर आम कटेगा इधर मक्खियों के जो हस्बैंड है ना मक्खे वो भी चले आते हैं, और इतने ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई कैसे जो दशहरी का है लुत्फ लिया जाए। तो चलिए भाई मच्छर है मक्खियां, अब जब मच्छर आ रहे हैं मक्खियां आ रही हैं तो कॉकरोच के पीछे रहे वो भी आते हैं। अब घर में क्या होता है ना कि ये परेशानियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए घर के आसपास अगर पानी जमा हो रहा है तो बिल्कुल मत होने दें। खिड़कियों पर आपको जाली अगर लगवानी है, नहीं लगवानी है अगर आपको लोहे की जाली, तो फिर आप जो आजकल आर्टिफिशियल चल रही है बहुत ही हल्की वाली जालियां चल रही है उनको भी आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि नियमित सफाई का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब नियमित सफाई में क्या है, नीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफूर यानी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीजें ऐसी हैं, ऐसे ऐसे अरोमा हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना बिना बुलाए मेहमान इनको आप दूर कर सकते हैं। अब क्या है कि भाई गर्मी है तो जो घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन पर भी गर्मी का असर पड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको गर्मी लग रही है उनको नहीं लग रही, इसलिए बहुत ज्यादा लोड लेने वाले जो उपकरण हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, उसकी सही वायरिंग है कि नहीं है, उसका जो वेंटिलेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह की अगर आवाज आ रही है, मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं अजीब तरह की आवाज आ रही है, आप सोच रहे हैं अरे होगा हमें तो देर हो रही है प्रेस कर लेते हैं, तो क्या है कि कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि भाई हम परेशान हैं अंदर से हमें कुछ करो, तो किसी भी तरह की अगर स्पार्किंग होती है या ओवरहीटिंग नजर आपको आ रही है तो फौरन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन से कॉन्टेक्ट करना है। अब दूसरी चीज ये है कि घर की छत, अब छत की भी बात कर ली जाए भाई, घर में जो छत है उसमें भी बहुत जरूरत है कि घर की देखभाल कर ली जाए, छत की देखभाल कर ली जाए। देखिए पानी की जो अहमियत है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए घर की जो पानी की टंकी है, पहली बात तो ये कि अगर ओवरफ्लो हो रही है तो उसको उससे बचाइए, पानी की बहुत ज्यादा अगर आप जाया कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं तो ये भी बहुत नुकसानदेह है। दूसरी चीज ये है कि जो घर की पानी की टंकी है उसकी सफाई कराना भी बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है ना कि अगर काई वाई लगने का डर है, गंदगी का डर है ना, तो सबसे इजी ट्रिक है वो आपको हम बता दें, हर साल हम बताते हैं कि जामुन की जो लकड़ी होती है उसको अगर आप अपनी पानी की टंकी में डाल देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं, बहुत सेफ रह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि जो पानी प्रदूषित होता है ना वो भी नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहली बात कि जो आपकी पानी की टंकी है उसकी सफाई करना जरूरी है, दूसरी चीज जामुन की लकड़ी आप उसमें डाल दीजिए। दूसरी चीज ये है कि घूम फिर के हम कहाँ आते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है ऐसा कि भाई खाना बन रहा है, सीटियां आ रही हैं, चावल कहीं पे चढ़े होंगे, कहीं पे जल्दी जल्दी सैलड काटी जा रही होगी, कहीं पे लोग सोच रहे होंगे आज कुछ खिचड़ी बनती है, चार उसके साथ बूंदी रायता सैलड और साथ ही साथ घी का तड़का, हाँ क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। अब किचन की भाई किचन का रुख करते हैं, किचन की बात करते हैं, तो गर्मियों में खाने पीने की जो चीजें हैं ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए हमेशा रेफ्रिजरेटर की जो सफाई है वो आपको ध्यान से रखना है, उसका सही जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना है, बहुत जरूरी है। बचा हुआ जो खाना है ना उसको खुले में बिल्कुल नहीं रखना है, फल सब्जियों को धोकर बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए, उसके बाद ही उसको फ्रिज में जगह दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें घर को घर बनाने में कामयाबी देती हैं और घर को घर जैसा फील कराती हैं। तो भाई 12:52 हो गए हैं, अब घर की बातें हो गई हैं, अब खाने की बात कर ली जाए, और इसी से रिलेटेड मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप क्विक सब्जी कैसे बनाते हैं, मतलब झटपट कौन सी रेसिपी आप बनाते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं fmakashwani.lucknow@gmail.com पर मेल करके। सवाल मेरा आज का ये है, जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जिसका नाम है होटो पे तेरी बात, उसमें मेरा सवाल यही है कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप कौन सी ऐसी डिश है जो तुरंत तैयार करते, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो जवाब है वो मेरे पास पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अभी स्टे कर रहे हैं और आपको भी क्या करना है, स्टे कनेक्टेड कहाँ, विद रेनबो 100.7 FM सुनते रहिए।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे है। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हैं। आगरा से सटे राजस्थान में भरतपुर रियासत के नरेश राजा सूरजमल द्वारा 265 वर्ष पूर्व आगरा किले पर की गई जीत की याद में प्रदेश सरकार उनके शौर्य को विजय दिवस के रूप में मनाकर याद करेगी। कल आगरा किला परिसर में जहांगीर महल के सामने स्थित
1: 9.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है अनुरोध गीत का, तो चलिए सुनते हैं अनुरोध गीत। कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो है, हम आपको बता दें कि वो फिल्म का नाम है सुल्तान, जिसमें आवाज है आतिफ असलम की और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, ये है महादेव घाट, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ जसपुर उत्तराखंड से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। तो सुनते हैं सुल्तान फिल्म का ये गाना आतिफ असलम की आवाज में।

0: फॉर एग्जाम्पल।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। आकाशवाणी बरेली से इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, और अब आप सुनेंगे अगला गाना जो कि फिल्म साजन से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष यूनुस खान, सोफिया खान। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजुबी निसार अंसारी, नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने, दानिश अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जिला मुरादाबाद खेमपुर से। और ये हैं जगदीश ठाकर, नायमा रंजूबाई, युवराज सिंह ठाकर, शिवांगी हिंगड़ी आलोट, जिला रतलाम एमपी से मालवा, रेडियो श्रोता संघ से। वारसी क्लब संधौली मीरगंज से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान, चडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी और निमित आहूजा। साजन फिल्म का ये गाना सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

ये गाना है जवानी तो इश्क होना ही है। इस फिल्म से आप ये गाना सुनेंगे आईपी सिंह, जॉनिता गांधी और एशेज कौर की आवाज में। और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, रियाज जसपुर उत्तराखंड से, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित हैप्पी, दुबिया निबाधक गाजीपुर से, प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से, अवधेश, प्रीति और नवनीत। साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि डॉक्टर मसरूर खान बदायूं से इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो वहीं इस गाने को आप सभी श्रोताओं ने भी सुनना चाहा है। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद बजाज, बिट्टा साहिल कालका से, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो सुनते हैं आप सभी की अनुरोध पर ये गाना। फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना ही था, जिसमें आवाज़

0: ये गाना है फिल्म एजेंट विनोद से, और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्ज़ा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू, अफसान बेगम, महजबी, बादाम अली, किशमिश जहां और महबूबा, साथ ही पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भागर, बाबू गौरी, हसन सिक्का, ज्योति नगरनोखा राजस्थान से, जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, गणेश शुभम और दुर्गेश्वरी जायसवाल, सादुल शेर राजस्थान से, रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला, कुणाल यादव, हर्ष यादव, राजवीर, यूनुस, मनीष, अंशिका, बीजना मुरादाबाद से, और ये हैं महेशपुर ग्राम खेमपुर से, जिला मुरादाबाद से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, अरिजीत सिंह और हंसिका अय्यर की आवाज में।
1: तन लड़े तो तन मुक जाए, रूह जुड़े तो जुड़ी रह जाए।

इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और जो अगला गाना है वो आप सभी के रिक्वेस्ट पर, आप सभी के अनुरोध पर, ये गाना जगदीश धाकड़, नाइमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी, आलोर जिला रतलाम एमपी से, चरडोगरी पिपरिया जिला छत्तीसगढ़ कबीरधाम से, दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जयकिशन इंद्राणी और माया साहू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, गांव लोरडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, महिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीप राम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु, साथ ही नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने, कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय जोड़ा, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना, फिल्म का नाम कपूर एंड सन्स, अरिजीत सिंह, आशीष कौर की आवाज में।

इस समय सुन रहे हैं आप आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। ये गाना सुना आपने अजनबी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

और अब आप सुनेंगे फिल्म दिल का रिश्ता फिल्म से गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर रदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। सुनेंगे आप सभी के अनुरोध का ये गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़, दिल का रिश्ता है ये इस फिल्म का नाम।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम खेल खेल। इस फिल्म से आपने ये गाना सुना और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और अब आप सुनेंगे ये गाना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अलका याग्निक की आवाज़ में। ये गाना आप सभी सुनना चाहते हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम नितिन पलक, करण गीतू निहारिका, वंश बत्ता। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, अमित उषा और हैप्पी। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका विरक। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी अलका याग्निक की आवाज़ में।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म से आपने ये गाना सुना अलका याग्निक की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत।

और अब आप सुनेंगे अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये गाना, जिसमें आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और प्रमिला गंज आलोर जिला रतलाम एमपी से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि, सरोज और कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, शुएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, मोहल्ला हलवायान, श्वेतकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, साजदा रानी, बिट्टू भैया और हिना कौसर। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, फिल्म का नाम अकेले हम अकेले तुम, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़।

अलबेला फिल्म से आपने ये गाना सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, और अब लीजिए सुनिए सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज का ये गाना। फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना, इसे गाया है सोनू निगम ने और इसे सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप राशि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर दीपक और झावेंद्र, कशबा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी।

कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं और इस समय आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और आगे के कार्यक्रम आप सुनेंगे अमृता के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 2:02। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग का की पहली कव्वाली आप सुनेंगे जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान की आवाज में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग 100.4 FM पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग, और कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं कव्वाली की ओर। आवाज है जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान की।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं ये गजल, आवाज है जगजीत सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी एमजी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज हम खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाती है?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
2: जी।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन

0: शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उस कहानी को अच्छे से समझाया जा सके। हाँ
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उसी
0: जी
1: तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं।
1: जी
0: और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला के जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले के थारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल,
0: एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने
1: बिल्कुल।
0: में बड़ा मजा आता
1: अजीब
0: था।
1: अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल में
0: है।
1: उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है, इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर

0: बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से
0: जी।
1: उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या

0: भी रहते हैं, और
1: जी
0: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है।
1: जी
0: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात
0: बिल्कुल
1: को आगे
0: सुनते हैं।
1: बढ़ाएंगे।

0: चार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: हम
1: बात
0: भी
1: है।
0: अपने
1: और
0: बचपन
1: इस
0: में पहुंच
1: साल
0: जाते हैं।
1: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
0: बिल्कुल
1: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
0: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
1: जी
0: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
1: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है, इसे भी वो रखते हैं।
0: बिल्कुल
1: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
0: सुरक्षित
1: हर
0: नहीं।
1: बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
0: बिल्कुल
1: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
0: बिल्कुल
1: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत कुछ
1: अभी
0: सीख
1: जैसे
0: सकते हैं
1: बारिश
0: सीख
1: का जब
0: सकते हैं।
1: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
0: हाँ
1: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे, ये भावना
0: बिल्कुल
1: विकसित होती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है, और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
0: बिल्कुल
1: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
0: बिल्कुल। और
1: हैं।
0: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं, या हम टीवी में लगे हुए हैं, या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जब
0: बहुत
1: बच्चों को
0: जरूरी है।
1: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है
0: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है
1: जी।
0: कभी कभी।
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो चल रही गाना सुने।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि
1: है।
0: रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे भी

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे।

0: एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी,
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें।

0: जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए

0: वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले

0: तो लीजिए श्रोताओं, बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:06 और इसी के साथ समय होता है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और आइए इस खूबसूरत से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक नया विषय जिस पर हमारे श्रोता अपने विचार हमारे साथ साझा करते हैं। तो आज कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके भेजे हुए कमेंट्स के साथ में। आप सभी की फोन कॉल्स भी हैं मगर शुरुआत करते हैं कमेंट्स के साथ। ये पहला कमेंट हमें भेजा है भवानी सिंह ताड़ा ने और ये लिखती हैं कि शादी इंसान की जरूरत भी हो सकती है और मजबूरी भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इंसान किस वजह से शादी कर रहा है। शादी को गहराई से समझने के लिए इसे इन दो अलग तरीकों से देखा जा सकता है। जब शादी एक जरूरत होती है जब इंसान अपनी खुशी और इच्छा से शादी करता है तब वह एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है और खूबसूरती के साथ उस रिश्ते को जीता है। साथ ही साथ की चाह, हर इंसान को लाइफ में एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। भावनात्मक सपोर्ट, सुख दुख बांटने के लिए किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। परिवार की शुरुआत, अपना नया परिवार और बच्चे चाहने वालों के लिए यह एक रास्ता है। सच्चा प्यार, किसी खास के साथ पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा। इनके हिसाब से जो शादी, जो आज का हमारा विषय है कि शादी एक ज़रूरत है या फिर मजबूरी, तो उस पर इन्होंने अपने विचार रखे थे। तो इनके हिसाब से तो भाई शादी आवश्यकता है। इसी के साथ राम कुमार रेवाड़ जी ने हैं और इनका पता है सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। साथ में है इनकी पत्नी चंद्रकला रेवाड़। लिखते हैं कि शादी एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव है जो जीवन को एक नई दिशा, स्थिरता और उद्देश्य देता है। यह कोई कानूनी औपचारिकता मात्र नहीं है बल्कि दो लोगों और परिवारों के बीच एक पवित्र बंधन है जो सुख दुख में एक मजबूत ढाल की तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। कल्याण सेन जी ने लिखा है कि जिज्ञासा जो भी हो लेकिन शादी एक जिंदगी का खास विषय है जिसमें सभी के लिए शादी करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। नरेंद्र नरवाड़े जी ने ये लिखते हैं कि शादी जरूरत होती है, जीवन में जीवन साथी की अहम भूमिका होती है, यह मजबूरी नहीं होती, एक दूसरे का बुढ़ापे तक का सहारा होती है। आरवी सिंह जी लिखते हैं कि वर्षों पुरानी परंपरा शादी और विवाह है तो ये मजबूरी तो बिल्कुल नहीं है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं गीत, उसके बाद में चलेंगे आपकी फोन कॉल्स की ओर।
1: डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता।
2: क्यों

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जरूरत होती है या फिर मजबूरी, और इसी विषय पर हमारे श्रोताओं के विचार जानने के लिए आइए चलते हैं उनकी कॉल्स की ओर।
3: हेलो, नमस्कार दीदी।
2: नमस्कार, कौन भैया बोल रहे हैं?
3: दीदी, मैं सिद्धार्थ नगर इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ में है आशा जी।
2: राजेश श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारा आज का जो विषय है वो है शादी जरूरत होती है या फिर मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: दीदी, जब हम लोग छोटे से बड़े होते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करें या सरकारी, तो शादी तो एक तरीके से होना ही है ना, ये एक रीति रिवाज समझ लीजिए, और मजबूरी तो इसको नहीं कह सकते। अब कई लोग ऐसे भी हैं कि शादी सब कुछ उनके पास पर्याप्त है लेकिन नहीं करते हैं शादी, भगवान के उसमें रहते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो शादी कोई मजबूरी तो मेरा मानना है मजबूरी तो नहीं है, लेकिन शादी तो एक रीति रिवाज है, होती ही है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप शादीशुदा हैं या अभी तक आपने शादी नहीं की?
3: मैम, मैंने तो अभी तक नहीं की शादी।
2: ठीक है, तो आप भविष्य में शादी करना चाहेंगे?
3: मैम देखिए, आप तो ओवर एज हो गई, और दूसरी बात यह है कि शादी ही सब कुछ नहीं है। हमारे भाई बहन है, हमारे भैया भतीजे हैं, अगर हम अपना परिवार मान के जब चलते हैं, दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, तो वो बच्चे हमारे अपने ही बच्चे हैं।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो करना चाहता है वो करे, और अगर किसी का मन नहीं है तो उसके लिए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी कि आपको करनी ही करनी है, क्योंकि इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो राजेश जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
3: दीदी, दो कलियां का एक गीत है, माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया, ये शमा रुती ये नजारे दिल मेरा मचलने लगा।
2: बहुत सुंदर गीत, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: हाँ मैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ, बहन रामचंद मखीजा काफिर भाई।
0: रामचंद मखीजा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: और जी, आज शुक्रिया
0: जी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है शादी जरूरत होती है या फिर मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप खुद शादीशुदा हैं या नहीं हैं।
1: मैं शादीशुदा हूँ, 60 साल का हूँ, नाती पोते आ गए हैं।
0: क्या बात है, आपका तो अच्छा खासा खूबसूरत सा परिवार है। तो कैसा लगता है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे कि शादी जरूरत होती है या मजबूरी होती है।
1: मेरे अनुसार शादी जो है जरूरत है, मजबूरी नहीं है
0: जी।
1: शादी उन रिश्तों और नातों का नाम है जो हमारे पिताजी दादाजी से चले आ रहा है और हमारे बच्चों में आ रहे हैं संस्कार। शादी जरूरत इसलिए है कि ये जो संसार बना है, चक्र बना है, इसमें माता पिता शादी करते हैं, फिर उनकी औलाद होती है ताकि वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी वो लाठी बने, उनको दो वक्त की रोटी मिल सके, जल ग्रहण कर सके। ये एक परिवार चक्र है एक प्रकार का। और ये रिश्ते नाते जो है हमारे उसी तरह से, जिस तरह से मंदिर में हम पूजा करते हैं भगवानों की, उसी प्रकार से पवित्र रिश्ता है जो शादी जो है, जरूरत जो है वो पवित्र रिश्ता है। उसे हम कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, मंगल सूत्र सिंदूर में लड़कियों के जो होता है, इस प्रकार के नेंग रहते हैं कई प्रकार के, तो बहुत ही अच्छी चीज है शादी जो है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही पवित्र रिश्ता है और ये रिश्ता जीवन भर निभाया जाता है। और चाहे कैसे भी जीवन में समय आए, सुख आए दुख आए, लेकिन हर कोई आपस में मिलके दो लोग साथ एक दूसरे का निभाते हैं। तो आपने बहुत सुंदर बातें बताई रामचंद्र जी।
1: रिश्तों में क्या होता है, परिवार बढ़ता है तो और फिर कहीं जाओ करो वहाँ के लोगों से भी रिश्ते नाते मैत्री बढ़ती
0: है।
1: एक देखा जाए तो भाई हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हमारे भगवान शंकर की भी पत्नी पार्वती हैं और हमारे भगवान राम की माता हैं सीता, भगवान कृष्ण जी के हैं परिवार हैं, उनके माता पिता हैं, उन्होंने शादी की, उनके बाल बच्चे हुए, तो उन्होंने अपना यश फैलाया। शादी जरूरत है और यानी संस्कार अच्छे दें हम बच्चों को और माता पिता की सेवा करें, यही एक जीवन चक्र का चक्रव्यूह बना हुआ है।
0: जी रामचंद्र जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और
1: आप सुनाइएगा सिस्टर, मैं न भूलूंगी इन रिश्तों को, इन नातों को।
0: जी जी, बहुत सुंदर गीत हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम। सुल्तान
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: रजा बात कर रहा हूँ मैम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: सुल्तान रजा जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। और हमारा आज का विषय है, शादी जरूरत होती है या मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: इश्क की पहली हवा सुहानी होती है
0: जी,
1: इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, फिर बर्बाद पूरी जवानी होती है। हर लड़का शौक से नहीं करता शादी, के पीछे कोई कहानी होती है।
0: क्या बात है, आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ है तभी इतनी दर्दनाक शायरी आपने बोली। रीजन क्या है भाई इसके पीछे?
1: जी मैम, जैसे कि गाड़ी में पहिए लगे होते हैं ना आगे बढ़ने के लिए,
0: जी
1: ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शादी बहुत जरूरी होती है।
0: तो ये मजबूरी हो गई या फिर
1: शादी करेंगे तो ये जरूरी होती है, मजबूरी नहीं,
0: जरूरी है। आपने एकदम सही कहा। और आप शादीशुदा हैं कि नहीं है?
1: नहीं नहीं अभी नहीं फिलहाल में।
0: चलिए जल्दी से आपकी भी शादी हो और आपकी भी जो जीवन की गाड़ी है वो आगे बढ़े ही नहीं,
1: आगे दौड़े रहे।
0: बिल्कुल दौड़े। तो सुल्तान रजा जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो तुम्हारे शीशे का था, दिल मेरा पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया।
0: ठीक है सुल्तान रजा जी।

0: जी आदमी शादी नहीं करेगा तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि सभी को शादी करना चाहिए अपने समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से।
1: जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि शादी करने में कोई भी मजबूरी नहीं होती, बल्कि खुशी खुशी इंसान को करनी चाहिए, है ना?
0: जी, खुशी खुशी करना चाहिए, और लोगों की मजबूरी होती है तो वो भी थोड़े से अपने हिसाब से शादी करते हैं। मजबूरियां कुछ कुछ लोगों की होती है, जैसे गरीब घर के लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत मजबूरी होती है, और जैसे खाते कमाते लोग हैं तो वो लोग अपने जस्ट करते हैं। और एक बात और भी कहना चाहते हैं मैम
1: जी,
0: कि जितने पैसे वाले लोग हैं जो शादी ब्याह इतने धूमधाम से करते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि शादी ब्याह बहुत अच्छे से करें, मगर जो गरीब लोग हैं उनका भी आप लोग ध्यान रखें तो उनका भी शादी ब्याह अच्छे से हो जाएगा।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने मोहसिन अंसारी जी, कि हम लोग शादी करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं और बहुत सारा खाना, यहाँ तक कि वेस्ट भी हो जाता है। शादी ब्याह में सबसे ज्यादा तो ये देखने में आता है, तो लोग सबका ध्यान रखें, जरूरतमंदों को भी खाना खिलाएं,
0: क्योंकि
1: तो खुशियां बढ़ेंगी।
0: जो बेकार हो जाता है उसको फेंक ही जाता है, तो उसको थोड़ा सी बचाएं, गरीबों को ध्यान दें तो उनका भी इसी से काम चल जाएगा, तो और दुआएं मिलेंगी तो सफल हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करने से खुशियां दुगनी होती है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, संदेश भी देना चाहता हूँ सभी लोगों को।
1: बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही मोहसिन अंसारी जी। आज कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
0: एक कड़ी मैम गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: प्यार क्या है बनाया राम ने, कोई जाए मेरा दिल थाम, ये गीत है।
1: ठीक है मोहसिन अंसारी जी, हम ये गीत भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: जी मैं यूपी बनारस से मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: मोहसिन अंसारी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा विषय है, शादी जरूरत होती है या फिर मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: शादी तो ऐसे जरूरत होती है।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: हमारी
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हेलो
5: हेलो
4: जी, कौन बोल रही है? अपना नाम बताइए।
5: मां नगर नई बस्ती जिला बरेली से तराना अंसारी बोल रही हूं।
4: तराना अंसारी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है शादी जरूरत होती है या फिर मजबूरी। क्या कहना चाहेंगी आप?
5: मैम यही कहना चाहूंगी, शादी जरूरत होती है क्योंकि शादी से हमें बहुत कुछ मिलता है और मतलब हमारे बुढ़ापे पे लोगों की वो होती है, बच्चे होते हैं तो वो देखभाल करते हैं, अकेलेपन में जिंदगी नहीं सकती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने, एक जीवन साथी की जरूरत हर किसी को होती है, तो ये जरूरत हो गई, मजबूरी नहीं हुई ना। आप शादीशुदा हैं तरह ना? चलिए हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आपका जीवन साथी मिले और आप भी बहुत खुशियों भरी जिंदगी बिताएं। तराना, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
5: मैम फिल्म का नाम है दो अक्टूबर, गाने के बोले चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
4: तो तराना जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं अभी?
1: मैम नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद अंसारी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और हमारा आज का जो कार्यक्रम का विषय है वो है शादी जरूरत होती है या फिर मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे सर?
1: जी मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, शादी जो है वो जरूरत होती है, इसको मजबूरी का नाम ना दिया जाए। क्योंकि शादी के बाद जो है जो नया जीवन शुरू होता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, शादी के बाद नया जीवन शुरू होता है। और शादी के बाद बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, बहुत सारे मतलब जो अधूरे काम होते हैं वो पूरे होते हैं, और जो लड़का लड़की का सपना होता है माँ बाप बनने का, वो भी शादी के बाद ही पूरा होता है। तो शादी को मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों की शादी मजबूरी में होती है उन लोगों को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिसकी वजह से उनकी शादी में मतलब उनकी शादी को मजबूरी में करना पड़े।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोशिश करें कि शादी जो जीवन भर का साथ है उसमें मजबूरी ना आए, बल्कि दो परिवारों की और दो लोगों की खुशियां हो, क्योंकि जीवन सबको साथ में बिताना होता है।
1: जी, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारे सपने जो है वो शादी के बाद ही पूरे होते हैं और वहाँ से एक नया जीवन शुरू होता है। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन को बहुत ही अच्छी और खुशहाली के साथ नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, और अपने जो जीवन साथी है उसको पूरा ख्याल, उसको पूरा सम्मान, पूरा प्यार देना चाहिए, ताकि एक दूसरे को अच्छी तरीके से उनका जीवन यापन हो सके।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि जीवन साथी जिंदगी भर के लिए साथ होते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को प्यार करना और परवाह करना बहुत जरूरी होता है, आपस में समझना उनको। तो आज लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी गाना सुना दीजिए, आज फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, इसका गाना है। चाहे लाल तूफान आए, चाहे जानवी जब जाए, बड़े जहर पीना, दिल भी मिल के ना होंगे जुदा, ये गाना सुना।
0: ठीक है लाल मोहम्मद अंसारी जी, हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन श्रोता बोल रही है?
1: मैं रूहानी बात कर रही हूँ जी से।
0: रूहानी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज का हमारा विषय है शादी जरूरत होती है या मजबूरी, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: मैं इस टॉपिक पे यही कहना चाहूंगी कि जिसकी मर्जी हो वो शादी करे, जो खुश रहना चाहता है, जिसे जिसके मन में हो कि मुझे शादी करना चाहिए, लाइफ पार्टनर अच्छा मिले तो शादी जरूर करे। क्योंकि जब लाइफ पार्टनर दोनों तरफ से अच्छे हो ना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही रूहानी, कि अगर आप खुश हैं अपने जीवन साथी के साथ या जो भी आपके लिए जीवन साथी चुना गया है, तो आपको शादी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हैं ना।
1: जी।
0: तो रूहानी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं होगी प्यार की गीत मूवी का सुनना चाहूंगी, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया।
0: क्या बात है, अभी तो वैसे भी बरेली तलैया ही बना हुआ है।
1: हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है ना।
0: बहुत सुंदर गीत आपने मौसम के हिसाब से चुना है। और रूहानी

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार। कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: जी। मैं नाज रेडियो क्लब ग्राम करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: निसार जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो विषय है वो है शादी जरूरत होती है या मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी, शादी एक जरूरत है,
0: जी,
1: क्योंकि शादी करके ही हम अपनी लाइफ और असली जिंदगी जो होती है वो शादी के बाद ही होती है। क्योंकि कैसे जीना है और कैसे क्या जिम्मेदारियां जब उठाना पड़ती हैं वो सब शादी के बाद ही जिम्मेदारियां और घर गृहस्थी लेके चलना पड़ता है, वो सारी शादी के बाद ही हमको पता चलता है कैसे करके हम अपनी जिंदगी बिताएं, कैसे करके हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ काटें, और कैसे जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ हम बड़े खुश होते हैं।

0: बच्चों को देख के हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और बड़ा सुकून और बड़ी खुशी हासिल।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। आप खुद भी शादीशुदा है ना निसार?
0: जी बिल्कुल।
1: तो आप शादी के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, जरूर जो लोग शादी नहीं भी करना चाह रहे होंगे आपकी बातें सुन के जरूर वो सोचेंगे कि उनको शादी करनी है।
0: बिल्कुल करनी चाहिए शादी, और इस शादी करके हमें अपनी जिंदगी के असली मजे और हसीन पल काटने गुजारने चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल जब शादी नहीं करते हैं तो ऐसी जिंदगी अपनी बिताते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, बस अपनी धुन में मस्त रहते हैं। शादी के बाद ही असली जिंदगी जो है वो शादी के बाद ही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब साथ में जीवन साथी हो तो खुशियाँ जो होती है जिंदगी में वो और बढ़ जाती है, और आपको कोई मिल भी जाता है जिसके साथ अपनी सारी खुशियाँ आप शेयर कर सकते हैं, है ना?
0: सुख दुख का साथी, हमारे जीवन साथी जब बन जाता है तो हम एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और एक दूसरे की परेशानी को परेशानी समझते हैं और खुशी भी मिलती है हमें और परेशानी भी दूर होती है हमारी।
1: बिल्कुल। तो निसार आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: ये फिल्म है सुहाग और इसका एक गीत है मत बांधो जबरदस्ती से शेरे की लड़ियां, तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां, मेरी रब ने बना दी जोड़ी।
1: ठीक है निसार जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए श्रोताओं, अब हमारे जो फेसबुक का जो पोस्ट था उस पर हमारे कुछ श्रोताओं ने और कमेंट भेजे हैं, उनके नाम भी शामिल करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। ये कमेंट हमें भेजा है तिलक राज अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ने खुर्जा उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि शादी करना तो जरूरी ही है, इसमें मजबूरी की कोई बात ही नहीं है। शादी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति का वंश आगे भी चलता है। शादी करना कितना जरूरी है, ये बात उन लोगों से पूछिए जिनकी शादी नहीं हो रही है। कितना ताना सहते हैं ये लोग, इसलिए शादी करना बहुत ही जरूरी है। और आइए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। कार्यक्रम का अगला कमेंट है सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लिखने वाले हैं राम कुमार रेवाड़। इनके परिवार के सभी सदस्य, शादी एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव है जो जीवन को एक नई दिशा, स्थिरता और उद्देश्य देता है। यह कोई कानूनी औपचारिकता मात्र नहीं है बल्कि दो लोगों और परिवारों के बीच एक पवित्र बंधन है जो सुख दुख में एक दूसरे की ढाल बनके उनका साथ देता है। इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपने नाम तो लिखे हैं लेकिन उन्होंने इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो श्रोताओं, ये जो कार्यक्रम है वो नाम या फरमाइश का कार्यक्रम नहीं है। इसमें जो भी हमारा विषय होता है उसके बारे में अगर आप लिखकर भेजेंगे तो ज़रूर हम उसको शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और साथ ही साथ ये तो आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपने विचार सबके सामने साझा कर सकते हैं। तो केवल अपने नाम और अपनी फरमाइशें ना लिखें बल्कि उस विषय के बारे में अपनी बातें भी लिखें कि आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है। एक और कमेंट हमें मिला है, ये प्रदीप कुमार जी ने लिखा है। लिखते हैं कि टॉपिक बहुत अच्छा है, हम इस संबंध में सभी के और अपने विचारों को आपका पत्र मिला प्रोग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पहचान गया। ठीक है, लेकिन ये कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, तो बेहतर होता अगर आप इसमें भी अपने थोड़े से विचार साझा करते। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से अब यहीं पर हमको दीजिए, यानी अमृता को दीजिए अनुमति, और अगले दिन में अगले कार्यक्रम और अगले विषय के साथ में हम फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी में। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 13 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 12 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 12 जून 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिला साथियों का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें चर्चा होगी ना बने स्वयं के डॉक्टर। साथ ही सुनिएगा वार्ता मंतशा जैती से। वार्ता का विषय रहेगा बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं, हेल्थ टिप्स और इनसे मिलिए भी। युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज, ओए लकी और ओबी किसान वाणी। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर, जिसमें होगी आज की बात में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में बातचीत। ग्राम जगत ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे से, जिसमें होगी चर्चा सड़क पर सावधानी से चलें। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता डाकघर से मिलने वाली सुविधाएं। वार्ताकार होंगी पुष्पा यादव और इनसे बातचीत करेंगी पूनम। अनुरोध गीत ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर, रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं, ये तो हमारी आज की शेष सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी कल प्रातः 8:15 पर, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। लोकगीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 8:45 पर। 9 बजे से आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से। सब रंग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला फॉलोड बाय FM रेनबो आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। दोपहर 12 बजे आपको जोड़ेंगे FM रेनबो के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे से। रस रंग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे से। 2:30 पर आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:30 से। शाम 4 बजे से आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। भजन संध्या ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:05 पर। लकी 3 कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर। कल शाम 5:45 का समय रहेगा कार्यक्रम कला में शायर का, जिसमें आप सुनेंगे सुनैना जिलानी और बेबी जैदी को। युववाणी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और नजराना है शाम। ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा बाल श्रम रोकथाम पर। साथ ही सुनिएगा लोकगीत कृषि पाठशाला ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से, जिसमें होगी परिचर्चा खेती के साथ साथ पशुपालन खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत। प्रतिभागी होंगे श्री महेंद्र कुमार, श्री तुलाराम, संचालन करेंगे राकेश कुमार शर्मा। आपके अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत को आप सुन सकेंगे कल शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे विविध लखनऊ से रिले प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम भजन संध्या का पहला भजन आप सुनेंगे हरिहरन के स्वर में।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम का अगला भजन आप सुनेंगे हरिओम सरन के स्वर में।

भगवान राम की अभी वो अवस्था है कि चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। मेरा प्रयास है

गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप की तुलना, सुंदर चेहरे की तुलना, सुंदर मुख की तुलना किसी चीज से करना चाहते। और कोई कवि होता तो शायद कह देता कि भगवान राम का मुख इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब का फूल है, या कमल का फूल है, या सूर्य है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के मुख से की जा सके। बहुत सोचा

आप सुन रहे हैं भजन संध्या 100.4 FM पर और अब समय है अंतिम भजन का। कार्यक्रम का अंतिम भजन आप सुनेंगे अनूप जलोटा के स्वर में।

0: राम है जी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने वाले हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार बहनों, आज आपके अपने प्रोग्राम नारी संसार में मैं शिल्पी हूँ आपके साथ। बहनों, आजकल का जो मौसम है वो कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश से राहत, तो ऐसे मौसम में ज़्यादातर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गले की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कभी ठंडा खाते हैं कभी गर्म, और बुखार, खांसी, ज़ुकाम, इन सब चीज़ों की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और किसी भी

बीमारी के दौरान घरेलू नुस्खों से खुद का इलाज करना कई बार खतरनाक भी हो सकता है। ये स्थिति को गंभीर बना सकता है, स्किन एलर्जी का कारण बन सकता है या गलत दवाइयों से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शारीरिक लक्षण कई बीमारियों के समान हो सकते हैं। आप जो बीमारी समझ रहे हैं असल में हो सकता है वो बीमारी ना हो। बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई दवाओं से लिवर किडनी भी अफेक्टेड हो सकते हैं। पेन किलर्स कुछ समय के लिए हमारी बीमारी को दबा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए पेन किलर्स ज़्यादा ना लें, और अगर हो सकता है बिना दवाई के काम चल सकता है तो आप दवाई ना लें। अगर आपको भी कोई मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवा लें। अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है, तो जब भी कभी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले अपनी ये जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन आपको दे रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी 3-4 दिन से ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सांस लेने में दिक्कत है, सीने में दर्द है, या फिर पेट में कुछ ऐठन सी हो रही है, ऐसा होने पर आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सही समय पर इलाज शुरू करें, और अगर इलाज सही समय पर होता है तो रिकवरी भी जल्दी होती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर खुद बनकर बड़ी परेशानी को न्योता ना दें, और करें मनोरंजन इस गीत के साथ।

0: बहनों, हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं बालिकाओं के लिए, और इसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दे रही हैं मंतशा जैदी जी, और विषय है बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं।
1: मैं मंतिषा जैदी। केंद्र सरकार द्वारा बालिका बाल योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, और चाहे वह भारत के किस हिस्से में रहती हों, बालिकाओं और उनके माता-पिता द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकारी बालिका बाल योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है जो पूरे देश में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भवाद जैसी सामाजिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना को शुरू में उन जिलों में लागू किया गया था जिनमें पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंगानुपात यानी कम महिला बच्चों को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी किया गया। ये मुख्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद करने के लिए एक शिक्षा आधारित योजना है और इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शामिल नहीं है। बालिकाओं के लिए इस सामाजिक कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है लिंग पक्षपाती चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बचपन में बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विशेष बचत योजना है जिसमें एक बालिका को प्राथमिक खाता धारक के रूप में रखा जाता है, जबकि माता पिता कानूनी अभिभावक खाते के ज्वाइंट होल्डर होते हैं। ये खाता बालिका के 10 वर्ष के होने से पहले खोला जा सकता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षों तक योगदान करने की

0: आवश्यकता होती है। बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे वाली युवा लड़कियों और उनकी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन में सुधार के साथ साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है। उड़ान स्कीम लड़कियों के लिए CBSE उड़ान योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। योजना का फोकस पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में लड़कियों के एडमिशन को बढ़ाना है। इस योजना में वे प्रयास शामिल हैं जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की छात्राओं के विशेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। CBSE उड़ान योजना की प्रमुख विशेषता 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्राओं के लिए मुफ्त पढ़ाई के समान ऑनलाइन जैसे वीडियो अध्ययन सामग्री आदि। 11वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए वीकेंड पर ऑनलाइन क्लास, मेधावी छात्रों के लिए सीखने और सलाह देने के अवसर, छात्रों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करें, छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग। CBSE उड़ान योजना में नामांकन के लिए मुख्य योग्यता शर्त, भारत में रहने वाली भारतीय छात्राएं CBSE से जुड़े स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्रों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित स्ट्रीम में दाखिला लेना चाहिए। छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट नियमों के तहत मेरिट आधारित चयन। इस योजना के आवेदक अपने CBSE स्कूलों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय योजना है। यह मुख्य रूप से भारत के पिछड़े वर्गों की लड़कियों को लाभ देने के लिए है। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना कैसे काम करती है? एक बार एक योग्य छात्रा का चयन हो जाने के बाद उसकी ओर से सावधि जमा के रूप में 3,000 रुपये जमा किया जाता है। जब छात्रा 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करती है और 18 वर्ष की आयु पूरी करती है तो यह राशि ब्याज के साथ वापस ली जा सकती है। धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2008 में कम आय वाले परिवारों को बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि सरकार द्वारा वर्षों से शुरू की गई अधिक आकर्षक योजनाओं के परिणाम स्वरूप धनलक्ष्मी योजना अब लगभग खत्म हो गई है। धन्यवाद।
1: अभी आपने जाने मंतशा जैदी के विचार और विषय था बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं।
2: सपना मेरा सच्चा।

0: आजकल हम लोग जो है अपनी सुरक्षा को लेकर शायद कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हमारे साथ जो है एक हमारी सखी हैं जिनका नाम है चारू। तो चारू जी कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी संसार में।
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ। तो चारू जी, आज आप हमें हमारी बहनों को क्या बताएंगी कि अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है, चाहे हम सड़क पर चलने की बात करें या फिर बात करें हम जैसे कि ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं?
1: जी, पहली बात तो ये है कि अपनी सुरक्षा अपने आप। हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी गलत ना हो जिससे हमको कोई हानि पहुंचे। हम सड़क पे चल रहे हैं तो सबसे पहले यातायात नियमों का पालन करें,
0: बिल्कुल
1: और जो हमारे रोड सिग्नल्स होते हैं वो हमें बताते भी सर कब आपको रुकना है, कब जाना है,
0: जी
1: लेकिन जिससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। और लिखा भी होता है कि दुर्घटना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
0: बिल्कुल
1: ये है। और हमें मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए रोड पे जब हम चलते हैं। ज्यादातर हमें देखा है कि बाइक पे लोग फोन पे बात करते हैं तो उससे भी दुर्घटना होती है। हेडफोन लगाए हैं, अपने सॉन्ग चल रहे हैं, तो ये मोबाइल भी सबसे बड़ा कारण है।
0: मोबाइल की
1: और
0: वजह से बहुत
1: लेकिन
0: सारी होता है, क्योंकि देखिए मोबाइल लगाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पीछे से कुछ हॉर्न की आवाज आ रही है या आगे तो ट्रैफिक नजर तो आता है, लेकिन वो अपने गाने जो चल रहे हैं या जो भी बात

0: ये उनकी मोबाइल पे उसी की धुन में लगे रहते हैं, और वही सबसे बड़ी चीज जो है वो मोबाइल है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मतलब टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, हमें मोबाइल का यूज तो नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी हमारी जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें भी फॉलो करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में, या फिर जैसे आजकल सर्दी का मौसम है और कोहरा बहुत ज्यादा होता है,
1: कोहरा बहुत
0: तब
1: है।
0: भी
1: हाँ
0: बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स की जो है न्यूज चलती है, समझ में आती है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा पता चलता है। तो
1: हाँ
0: इसमें भी आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को ड्राइव करते समय, या जो ड्राइवर्स हैं जो ड्राइव करते समय, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार लोग ऐसा करते हैं, कोई वाहन जा रहा है आगे बड़ा, पीछे होते हैं, बाइक हो चाहे हम फोर व्हीलर से हो, सोचते हैं कि हाँ मतलब हम देर लगेगी इसको निकलने में, तो हम साइड से निकाल लें। लेकिन वो हमें लगता है कि हम निकल जाएंगे, लेकिन पास आके वो उतनी जगह नहीं होती कि हम निकल पाए। वही ओवरटेक के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि तो हमें लगता है कि हम जल्दी में हम निकल जाएंगे, लेकिन वो जो वाहन होता है वो इतना लोडिंग उसकी वो होती है कि हम नहीं निकल सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा देरी भरी है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा देर से वो हो जाइए, या तो फिर आपको इतना लगे कि हम निकल सकते हैं तो बात अलग है। तो
0: जबकि
1: ऐसे
0: ट्रक या बस के पीछे भी लिखा हुआ होता है, स्लोगन्स भी लिखे हुए होते हैं कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है ना, देर मतलब देर भली अगर जल्दी है इतनी जाने की, तो आप थोड़ी देर से पहुंच जाओगे तो कोई बात
1: थोड़ी देर
0: नहीं,
1: से
0: कम से
1: पहुंच
0: कम
1: जाएंगे।
0: हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो है लोग नहीं समझते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग इस पे ज्यादातर ऑनलाइन अगर काम करते हैं, तो उसमें भी हमें अपनी सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि क्या होता है, पासवर्ड होता है वो पता चल जाता है, या फिर जो मोबाइल्स होते हैं वो भी ट्रैक कर लिए जाते हैं, मतलब एक ही मोबाइल का क्लोन दूसरा मोबाइल बना लिया जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं या कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्या बताना चाहेंगी हमारी बहनों
1: जी,
0: को?
1: हम ऑनलाइन आजकल तो ज्यादातर काम ऑनलाइन ही है, कुछ भी हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे आपको शॉपिंग करनी हो, सारा काम ज्यादातर हमारा ऑनलाइन ही करते हैं। ज्यादातर कुछ लेने जाएंगे तो भी हम ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे।
0: जी
1: सबसे पहली बात ये है कि हमें मतलब अपनी ऑनलाइन, चाहे हम पेमेंट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, तो पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग है तो आप प्रॉपर उसमें पासवर्ड, अपने लॉक ध्यान रखिए, और हर किसी को मोबाइल हाथ में मत दीजिए, ये पूरी सेफ्टी के साथ उसका यूज करिए। और आप अगर उसको यूज भी कर रहे हैं नेट बैंकिंग को, तो तुरंत उसको प्रॉपर बंद कर दें, और मतलब देखने की कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। पूरा ये नहीं कि हमने नेट बैंकिंग करी और मोबाइल उधर कहीं रख दिया, किसी के हाथ में लगा तो उसने हमारी सब चीज देख ली, पासवर्ड किया हमने, क्या पेमेंट किया है, क्या लिया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पेमेंट कर रहे हैं इस चीज को, तो ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड है, हम कुछ ले रहे हैं और हमें मिल कुछ और रहा है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: और बहुत बार ऐसा भी होता है कि शॉपिंग जो है, कुछ जो ब्रांडेड शॉपिंग्स होती हैं वो तो कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन दिखाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई जो कंपनीज होती हैं वो ऐसा लालच या ऐसा प्रलोभन दिखाती हैं कि अगर बिल्कुल अभी आप प्रोडक्ट मंगाएंगे तो हमें जो है कैश अभी कर दीजिए उसका, ऐसा करके भी ऑप्शन होता है ना, और
1: जी
0: बहुत
1: बहुत सही
0: सस्ता
1: ऐसे
0: सस्ता दिखाते हैं उसमें कि सेल है, और बिल्कुल अभी इस समय आप करेंगे, सेल चल रही है, लाइव सेल चल रही है, अगर अभी आप पेमेंट करेंगे तो आपको ऑफर में एक के साथ दो चीजें मिलेंगी, या बहुत ज्यादा उसका डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में भी लोग बहुत जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, मतलब बिना डिलीवरी के, बिना कुछ जाने पहचाने, और एकदम से ही सामान मंगाने के लिए, इसलिए से वो हो जाते हैं कि कम पैसों में मिल रहा है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि जो पेमेंट उन्होंने किया था, चाहे 100, 200, 500 कुछ का भी किया था, वो खाली वेस्ट हो गया उनका वो पैसा, और उसमें से सामान भी नहीं आ पाता है। तो इस तरीके की
1: ऐसे
0: चीजें
1: लोग जी
0: वो भी नहीं
1: ऐसे लोग
0: करनी
1: अपना
0: चाहिए।
1: प्रचार प्रसार बहुत करते हैं, लेकिन वो सब फ्रॉड होता है। और हमें लगता है चीज बहुत सस्ती, हमें इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये सब फ्रॉड है। वो सिर्फ हमें दिखाते हैं कि हमारा एट्रैक्शन उस तरफ हो कि हम चीजों को लें, लेकिन जब हम पेमेंट कर देते हैं हमें लगता है ये चीज नहीं, तो हमें पता लगता है कि ये गलत हुआ।
0: हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है, और बहुत ज्यादा अलर्ट होकर करने की जरूरत है, चाहे हम सड़क पर चल रहे हों, घर

0: में हों या फिर हम मोबाइल पे कोई काम कर रहे हों, है ना, क्योंकि घर में भी हम लोगों को बहुत ही सेफ्टी की जरूरत होती है, मतलब बहुत ही सेफ्टी के साथ काम करना होता है, क्योंकि मोस्टली लेडीज हम लोग जो है क्या करते हैं, किचन में काम करते हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, तो बाहर भी जाके काम करना है, घर में भी, तो जल्दबाजी में किचन में भी जल्दबाजी करते हैं, लेकिन किचन में भी काम करते समय हमने बहुत ही ज्यादा सेफली वर्क करना चाहिए।
1: बहुत छोटी छोटी बातें होती है कि गैस ऑन ना रह जाए, जल्दी में जा रहे हैं,
0: या जल्दी पता चला कि एक तरफ किचन में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन लगाई और हाथ हमारे गीले हैं, तो एकदम से प्लग को टच किया तो करंट लग सकता है, तो ये भी यहाँ पर भी हमें अपने आप को प्रोटेक्शन की, अपने आप को सेफ करने की जरूरत है, ध्यान रखना है, अलर्ट होने की बहुत ज्यादा
1: सुरक्षा अपने हाथों में
0: है ना। तो इस बारे में कुछ कहेंगी, किचन में जब आप काम करती हैं तो आप तो ध्यान रखती ही होंगी।
1: जी, मैं जब किचन में काम करती हूँ बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ध्यान रखना ही पड़ता है, अगर हम जरा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है।
0: जी,
1: और एक आध बार ऐसा मेरे जंग हुआ भी है कि मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये लगा कि अरे हमें तो लगा कि गैस बंद है, लेकिन उस टाइम वो गैस बंद नहीं थी, गली तो खुली हुई है।
0: हाँ,
1: जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, और बच्चों को भी बहुत ही किफायत के साथ उन्हें ये कहा जाता है किचन में तो आपने आना ही नहीं है। मैं भी अपनी बच्ची को किचन में नहीं आने देती हूँ, आने की कोशिश करती है, जैसे कुछ मैं बना रही होती हूँ तो आने की कोई मम्मा ये मम्मा वो ऐसे बात करके, तो लेकिन मैं मना करती हूँ नहीं बेटा आप किचन में नहीं आना, क्योंकि एकदम से हम लोगों का ध्यान बढ़ जाता है और कुछ कढ़ाई पर घी में कुछ है बन रहा है, सब्जी बन रही है या दूध बॉयल हो रहा है, तो दो मिनट में पता नहीं चलता कि कोई चीज गिर जाए तो बच्चा पास में हो, इसलिए तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके भी छोटे बच्चे होंगे घर में, है ना, तो उन्हें भी चाहे वो घर में रहें बाहर रहें ऑनलाइन कुछ वर्क कर रही हो, हर तरीके से उन्हें अपनी सिक्योरिटी की अपनी सेफ्टी पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा,
1: छोटे बच्चे के संग तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई गर्म चीज ना रखें कि जिससे उनकी पहुंच में चल जाए, कोई अचानक से छू ले कुछ भी है,
0: जी
1: दूध वगैरह बॉइल करा हुआ रखा है पता चले वो छू लें और फिर उससे नुकसान, और भी बच्चे समझदार होने लगते हैं तो हर चीज छूते हैं हर चीज पकड़ते हैं।
0: हाँ, उन्हें शौक होता है देखने तक करके कि मम्मा ये कर रही है तो हम भी करके देखें, है ना। हाँ,
1: वो तो अब बहुत होते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि काम तो करना लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज ना छूने, ये चीज खुली नहीं है।
0: जी आज आपने हमारी बहनों को इतनी अच्छी बातें बताई कि हमें किस तरीके से अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना जो खान पान है उस पर ध्यान दें और संतुलित आहार लें। रोज़ाना 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, 7 या 8 घंटे की गहरी नींद लें और दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। तनाव टेंशन स्ट्रेस से बचने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपनी थाली में हरी सब्जियां, ताज़े फल, दालें और नट्स को ज़रूर शामिल करें और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा शुगर या मैदे से बनी चीज़ों से दूरी बना के रखें और ताज़े फल और हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको प्राप्त करें। दालें, पनीर, दही, अंडे, ये सब चीज़ें मांसपेशियों और एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। साबुत अनाज, जौ, ओट्स, ब्राउन राइस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं, इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए शिल्पी को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा लेकर आ चुकी हूँ आपको और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और साथियों, आज भी मैं आपसे बातें बहुत सारी करने वाली हूँ और हमारा जो सेगमेंट है ओएल की वो भी होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चंस जो हमने आपसे पूछा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 1984 नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा और इसका सही उत्तर जो है वो हमारे प्यारे लिसनर्स को हमें बताना है। फिलहाल लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

0: फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब?
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आवाजों के इस हसीन सफर में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त साबिता और अब वक्त है कुछ खास बातों का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी 100.4 MHz पर और आज 11 जून को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं खेलना जो है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एंजॉय करना नहीं है, बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में घोषित किया। इस वर्ष 2026 की थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, यानी खेल को बचाइए, बचपन को बचाइए। इसका संदेश है कि हर घर बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में खेलने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, खेल जो है वो बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास, टीम भावना और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करता है। यही नहीं, खेल स्ट्रेस कम करने और खुशहाल लाइफ जीने में भी हेल्प करता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम संकल्प लें कि बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाकर खुले मैदान, पार्क और रचनात्मक खेलों से जोड़ेंगे, क्योंकि खेलता हुआ बचपन ही खुशहाल भविष्य की पहचान है। तो मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और जीवन में खुशियों के रंग भरते रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ 100.4 MHz पर प्रोग्राम युववाणी और एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, और आप बने हुए हैं अपनी दोस्त आबिदा फातिमा के साथ। और आज हम याद कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और अमर देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल को, क्योंकि आज है उनकी जयंती। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सपूतों में से थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे प्रसिद्ध ककोरी कॉन्स्परेसी के प्रमुख नायकों में से एक थे। बिस्मिल जी केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि और लेखक भी थे। उनकी रचनाएं युवाओं में देशभक्ति और साहस का संचार करती थीं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जी हाँ आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनका बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई में हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहा। तो आइए राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर हम उनके साहस, त्याग और देश प्रेम को नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।

जैसा कि जी हाँ मैं समझ रही हूँ आपको इंतजार है हमारे सेगमेंट ओए लकी का। तो हमारे आज के ओए लकी सेगमेंट के विनर हैं मुकेश राणा। तो आइए हमारी इनकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लगातार कभी भी अलर्ट आ जा रहा है, आंधी आ जा रही है, बारिश आ जा रही है, तो ऐसे में धूल भरी तेज हवा जो है, आंधी है, उससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अचानक आती है और काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले अगर बाहर तेज आंधी शुरू हो जाए तो तुरंत किसी पक्के मकान या सुरक्षित जगह में शरण लें, पेड़ों से, बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें, क्योंकि इनके गिरने का खतरा ज्यादा होता है। घर के अंदर हो तो दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि धूल और तेज हवा अंदर ना आए। अगर संभव हो तो वैसे खिड़कियों से दूर रहें। बाहर निकलते समय आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और चेहरे पर कपड़ा जरूर रखें ताकि धूल से बचाव हो सके। और सबसे जरूरी बात, अगर बहुत ज्यादा तेज आंधी हो तो अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर बाइक या खुले वाहन से बिल्कुल भी यात्रा ना करें। दोस्तों, थोड़ी सी जो सावधानी है वो हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। फिलहाल सुरक्षित रहिए, समझदारी से रहिए।

और साथियों प्रोग्राम में अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है कि 1984 नामक प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो किसने लिखा, और इसका सही उत्तर है जॉर्ज ओरवेल ने। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपा, शाहनूर अंसारी, सुदर्शन शाह, रामकुमार रेवार, गंगा सिंह रावत, यासीन, प्रवीण चौहान, जॉन डी कैस्ट्रो, हीरा मणि, दिनेश राजकुमार, मीका, राजवीर सिंह, नरेंद्र शर्मा, राजेश वर्मा, सोमदत्त और हमारे अन्य सभी साथी।

अब वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का, तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा बताइए वाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 2430001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा फातिमा को इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने वाले हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आबो आबो पूनम महन, राम राम।
2: राम राम भैया, राम राम। कैसे हालचाल है आपके?
1: भैया हालचाल अपने बतावेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम हमारे सुन रहे हैं सब भैया बहन, उनको भी हम दोनों की
2: राम राम।
1: हालचाल की बात कही पूनम बहन, तो आप देख रही हो गर्मी तो खूब जोर शोर पर है और बारिश भी भैया, तो ऐसे में गर्मी से कुछ राहत मिली है और जो गन्ना में पानी लगाने पड़ रहा हो वो अब बच गए, और बाकी जो धान की पौध डाली रखी है खेतन की तैयारी चल रही है, मेलबंदी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अगले आने वाले समय में धान की रोपाई करने है। कुछ अपनी बताओ का कुछ चल रहा हो खेती बाड़ी में?
2: भैया अब आपने जो कही कि धान की बेड़ डाल रखी है, हमारे तो सिर्फ धान फूले हैं, अब बेड़ तो ना पर ये पर खेत तैयार कर लो।
1: अच्छा,
2: तो वे फूल गए पसो पले रोज तो

0: खुदे ये अब एक आध दिन में डाल देंगे
1: जवई करिए।
0: हाँ हाँ हाँ भैया बे जवई।
1: लेकिन देखो जहाँ से पहले आप जो है मेड़ो बंदी कर लियो खेत की, सही तरीका से।
0: हाँ भैया मेड़ बंदी तो कर ली।
1: अच्छा मेड़ बंदी कर
0: लो, वो सब काम कर लो। खेत कते तैयार है, वो बीज आने में थोड़ी देर ही गई भैया।
1: अच्छा जवई से थोड़ी देर होगी इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप खेत को तैयार अच्छे तरीके से करो। जो हमारे भैया बहन कार्यक्रम सुन रहे हैं वे उस सब लगे होंगे अपने खेतों की तैयारी में, मेड़ बंदी कर रहे होंगे। कुछ किसान भैया बहनों ने पौध डाल रही है अधिकांशतर, कुछ डालने की सोच रहे हैं।
0: हाँ भैया ज्यादातर परिये गई है, थोड़े बहुत भैया की रह गई है।
1: बिल्कुल। लेकिन पूनम बहन देखो बातचीत तो अपने कार्यक्रम में बहुत सारी अपने भैया बहनों से होंगी आज।
0: हाँ भैया वे तो होंगी।
1: लेकिन आपको मालूम कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के बीच में रखते हैं एक सवाल।
0: हाँ तो कहा है आज को सवाल, जा तो बता दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे भैया बहन भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा सवाल लेके आए आज पूनम बहन और कृष्णा भैया। तो अपने भैया बहनों के समक्ष सवाल रख दे रहे हैं। आज को सवाल है, पशुओं में सर्रा रोग किस मक्खी के काटने से होता है? तो जब सवाल पे हमारे जो भैया बहन हैं उनको करने हैं मंथन, जाको जवाब अपने बताओगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में।
0: हाँ भैया।
1: उस समय जो है मिलान हमारे भैया बहन कर सकते हैं। बात अपने खेती बाड़ी की कर रहे हैं कि खेती में जो काम चल रहे हैं, लेकिन ये देखने में आ रही है पूनम बहन, जैसे अपने पहले खेती करते अपने जो बुजुर्ग है खूब खेत में देसी खाद डालते।
0: हाँ भैया।
1: और धान की जब रोपाई करते तो बाद से पहले सनई ही, लोबिया ही, पटसन ही, ढेंचा ही, इनको पहले बो देते।
0: हाँ बो देते।
1: और जब समय पर आके बाकी खेत में पलटाई कर देते, जुताई कर देते और बाको पानी भर के बाई में सलाय देते, जिससे कि जो हमारे खेतन के लिए हरी खाद मिल जाती है।
0: हाँ भैया, अब बात हमारी जो मिट्टी ही बहु खूब सही रहती है क्या,
1: सही रहती है। फसल देखती, फसल कितनी बढ़िया होती।
0: हाँ फसल तो बहुत बढ़िया होती। और आपको एक बात और बताऊं भैया, उस समय पे कुछ बीमारियां तो कम लगती है ना, कि देख रहे हैं आजकल की सब्जियां की तो सब्जियां रहेगी, घर के उस सबको कितनी परेशानी हुई रही है।
1: तो सब्जी अपने पूनम महन खाए तो बेच रहे हैं तो बीमारी अपने को भी होगी।
0: हाँ।
1: लेकिन कारण पता जाओ कहा है, पहले जैसे खेत में चना उगाए जाते, दलहनी तिलहनी फसलें होती हैं और शुद्ध होती होत का हो कि जो प्राकृतिक खेती जैविक खेती वो अपने करते हैं।
0: हाँ भैया, चना की बात आपने करी, चना को साग खाओ कितना तो अच्छा लागत हुआ।
1: अरे पूनम बहन, तुमने तो चना की साग की बात कहे, कहते मुंह में पानी ले आई, क्योंकि ठंड को अब समय हल्के हल्के अगले आवेगो।
0: हाँ।
1: तो ठंड को जब मौसम होता है अलाए में बैठे हुए तापत होते हैं, और उस समय आएगा जब चना को साग हो और चावल की या फिर मक्का की रोटी हो। हाँ। तो फिर आनंद कुछ अलग होता है।
0: हाँ भैया, है ना।
1: तो हमारे कहने का मतलब है कि अब हमें फिर प्राकृतिक खेती पर आने पड़ा है, क्योंकि हम अपनी जो भूमि है बाद से कहीं ना कहीं ज्यादा दोहन कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: उपज लेने में ज्यादा सफल हो रहे हैं, लेकिन उतना हम बाकू दे ना पा रहे हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि आपने देखी हुई कि हमारे भैया बहन लगातार फसलें करते हैं और एक ही फसल करता है, देखिए ना, देखिए
1: फसल चक्र ना अपना।
0: हाँ, मतलब आपको तो बासे तो घर की जो मिट्टी है खेत की बाको नुकसान ही होता है।
1: नुकसान होत ना हो रो पूनम बहन, क्योंकि जो ना तो देसी गोबर की खाद डाल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम पशु पालना रहे हैं।
0: हाँ,
1: एक दो पशु दूध के लिए पाल रहे हैं, तो फिर देसी खादों ना मिल रही है, हरी खादों हम अपने खेत में डालना है और बास खेत से जो है फसल लगातार ले रहे हैं। और एक पूनम बहन एक बात।
0: हाँ भैया।
1: पहले अपने खेत में बजाते तो मुँह खूब तुतली पकड़ी हुई बर्थी में होती।
0: हाँ, हाँ,
1: तो तुतली उड़ाते थे तो पकड़ लेते।
0: हाँ भैया, कहू कहू तो घर के ऐसे करके हाथ कर लेते।
1: हाँ,
0: मतलब हाथ एक जगह स्थिर कर लेते तो वे बाई बैठ जाती।
1: हाँ,
0: हाथ पाए
1: और टिड्डा कूदते खूब।
0: हाँ,
1: है ना। और देखा थे कि कहीं मेढक दिखाई दे रहा है, जैसे अब चौमासे के महीना में टर टर कर रहे हैं। लेकिन अब ये दिखाई ना पड़ता है
0: भैया, जे घर के जो मिट्टी में जो दिक्कतें आ रही है उन वजह से इन लोगों ने परेशानी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और एक बात और, कछुआ खूब देखते हैं खेतन में।
0: हाँ, कछुआ
1: हैं
0: खूब मिल जाते हैं।
1: अब है का कि हम अपने खेतन में अंधाधुंध खाद डाल रहे हैं।
0: हाँ।
1: और जो को जरा सी बीमारी दिखाई पड़ी तई ले गए अपने स्प्रे मशीन और कीटनाशक दवाई ले आए और छिड़क आए, तो बासे भाव का कि जो हमारे मित्र कीट हैं वे जो है समाप्त हो रहे हैं।
0: हाँ भैया, जब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो हमारे भैया बहनों को ध्यान रखना चाहिए है ना, कि अगर वे अपनी खेती में प्राकृतिक खेती अपनावेंगे जो हमारी कर रहे हैं उनमें अगर अच्छी तरीका से खेती को काम करेंगे तो उनकी जो मिट्टी है बहुत अच्छी रहेगी और उनकी जो फसल है बहुत अच्छी होगी।
1: और जब फसल अच्छी रहेगी शुद्ध मिलेगी तो जब हम बाकू खाएंगे तो हम सही रहेंगे।
0: हाँ।
1: लेकिन पूनम बहन देखो, अपनी बातचीत तो भैया बहनों से होगी, लेकिन देखो आज जो कृषक गोष्ठी है ना, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत उर्वरकों को संतुलित प्रयोग।
0: अरे भैया, तो जय संबंध में तो लाग रही है, क्योंकि आपो खेते की बात कर रहे हैं और जेऊ देखो खेते वाली बात आएगी।
1: और पीछे तो देखो पूनम बहन जो प्रतिभागी हैं, प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी और ये भैया गिरीश कुमार जी जीव हाँ। तो आए पहुंचे हो, देखो सुरेंद्र भैया संग में चले आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे तो देखो हाँ। अपनी बातों रोक लियो यहीं पर।

0: हाँ सही
1: और
0: है
1: अपने
0: भैया।
1: भैया बहनों को पहले सुनवा दो या कृषि गोष्ठी।
0: हाँ भैया जरूर सुनवाओगे।
2: किसान साथियों नमस्कार, हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र के किसान भैया हैं और वे स्टूडियो में आते हैं और कृषि गोष्ठी के माध्यम से हम आपको उनके अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार जी, गिरीश कुमार और प्रमोद कुमार जी। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी हुई?
3: मेरी उम्र लगभग 28 साल है।
2: 28 साल। पढ़ाई लिखाई करी आपने?
3: जी।
2: कहाँ तक पढ़ाई लिखी?
3: एमकॉम कर रखा है।
2: पढ़े लिखे युवा कृषक है, बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई लिखाई को खेती बाड़ी में काफी महत्व होता है।
3: जी।
2: गिरीश कुमार जी, आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी हुई?
4: सर मेरी साल 35।
2: 35 साल। आपने पढ़ाई लिखाई करी?
4: जी करी थी।
2: कहाँ तक पढ़ाई?
4: हाई स्कूल फेल।
2: का कारण
4: सर? मम्मी एक्सपायर हो गई, घर में छोटे छोटे बच्चे थे और खेती बाड़ी भी थी ज्यादा, तो इसलिए पढ़ नहीं पाए थे।
2: खेती बाड़ी को अब ध्यान चलो। प्रमोद कुमार जी, आपकी कितनी उम्र हुई?
5: मेरी उम्र 25 साल है।
2: 25 साल। आपने करी पढ़ाई लिखाई?
5: जी मैंने पढ़ाई की।
2: कहाँ तक पढ़ाई करी आपने?
5: मैं इंटर वाई बीबी किया था।
2: बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई लिखाई करी है। और आज को हमारे खेती बाड़ी को विषय है, आज जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उसका विषय है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र कुमार जी,
3: जी
2: खेत बचाओ का मतलब क्या है?
3: खेत बचाओ का मतलब रासायनिक खादों का उपयोग कम करना, जैविक खादों का उपयोग ज्यादा करना,
2: ज्यादा करना,
3: मिट्टी उपजाऊ बनाना, देसी गोबर खादों का ज्यादा उपयोग करना, यही रासायनिक खादों से बचाना, यही सब।
2: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो हमारी जमीन है वह धीरे धीरे कमजोर हो चली जा रही है। हमें करने का है देसी खाद डालने हैं, जैविक खाद को इस्तेमाल करने हैं और दूसरी चीज का है रासायनिक खाद को उपयोग कम करने हैं। गिरीश जी जी कह रहे हैं रासायनिक खाद को उपयोग कम करा, तो रासायनिक खाद को उपयोग कैसे करके कम करा?
4: अच्छी बात कही भैया ने, मतलब देसी खाद मिला के उसमें जमीन में लगाना है और ढेचा भी बोना है खेती में, उसमें सड़ाना जोतवाना, उसमें तब मिट्टी अच्छी होती है। उसमें रसायन खाद लगाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बहुत कम करती है।
2: ढेंचा क्यों बोना चाहिए?
4: ढेंचा से खेती मिट्टी बढ़िया होती है, उससे इतना इतना बड़ा हो जाता है, फिर जोत देते हैं उससे बढ़िया हो जाती है मिट्टी, उससे तो आके पानी भर के वो फिर उसमें सड़ने लग जाता है।
2: जैसे इस समय धान की पौध की तैयारी चल रही है
4: जी,
2: जिस खेत में धान लगने हैं वो खेतों लगभग खाली है, तो उन खेतों में क्या क्या काम करे जाए, कैसे करके जो हम उनमें संतुलित उर्वरक है उनको प्रयोग कर रहा है?
4: देसी खाद डाल रहे हैं खेत के कोण में, सफा करता है, उरा पास जुतवा रहे हैं, दो दो तीन तीन बार जुतवा दिए खेत बढ़िया तरीका से, मट्टी बढ़िया हो रही है जुताई से, जो कि धान में पैदावार अच्छी मिलना चाहिए। और उससे रसायन खादों से हानिकारक होती है, उसमें दवाई ज्यादा प्रयोग होता है, उसमें के लिए हानिकारक
2: उर्वरक को प्रयोग कर रहे हैं वो ज्यादा न करके कम कर, और देसी खाद और हरी खाद को उपयोग ज्यादा करें।
4: जी सर।
2: प्रमोद कुमार जी, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारी जमीन है, आप एक पढ़े लिखे युवा कृषक हैं, जमीन जो हमें आज से 20 साल पहले मिली और आज की जमीन, कितना अंतर?
5: आज की जमीन से 20 साल पहले की जमीन से बहुत फर्क गया, हो गया है। क्यों? आज के जमाने में ज्यादातर लोग क्या रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं,
2: यानी कि रासायनिक खाद को ज्यादा
5: उपयोग कर रहे हैं, देसी खाद है वो कम डालना चाहते हैं, इसलिए जो रासायनिक खाद है उसे जो मतलब जमीनी उपजाऊ भूमि है वो कमजोर हो चुकी है, इसलिए देसी खादों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए।
2: अच्छा, हमें रासायनिक खाद प्रयोग कम कैसे करके करा?
5: जैसे कि पशुओं का देसी खाद है उसे सड़ा लें, सड़ाने के बाद उसे छिड़काव करें, खाद बना लें घर में, जैसे कि केंचुओं द्वारा या मतलब इकट्ठे करने के बाद तो उसे सड़ा के मतलब फैलाए तो अच्छा लगता है। दूसरी बात, नई खेत की पताई होती है उसे सड़ा दोगे तो उससे भी खाद बन जाता है, या फिर क्या है ढेचे बो दें उससे भी कहते काम चल जाता है।
2: राजेंद्र कुमार जी, हैं आपसे एक बात ये पूछना चाहेंगे हम, तो कब मिट्टी की जांच करानो सही रहेगी?
3: जी सर, मिट्टी की जांच कराना चाहिए, क्योंकि उसमें किस मात्रा में किसकी कमी है उससे ये पता लग जाता है कि जमीन को किस पोषक तत्व की कमी है। जांच ना कराने से उसमें पता नहीं चलता है कि किस पोषक तत्व की जरूरत है जमीन को, और हम अंधाधुंध खाद डालते रहते हैं, उससे पता लगे जरूरत है नाइट्रोजन या फास्फोरस की उसमें डाल दिया और कुछ जैसे पोटास वगैरह ये सब चीजें जो पोषक तत्व की कमी रहती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी हो है।
2: अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे

0: जी, उसमें सुधार कहीं ना कहीं। आपने बात करी ही देसी खाद की, गिरीश कुमार, देसी खाद आजकल जो हमारे गांव में किसान भैया हैं उनके पास कम है। कम क्यों है? उनने जानवर पालन कम कर दिया, तो वे कैसे करके अपने खेत में देसी खाद को डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
1: कुछ लोग पालते हैं गाँव में, कुछ लोग मोल लेते हैं खाद, कुछ लोग अपने जैसे ढेचा बो दिया जे है, अपने पताई उताई गन्ना करते हैं जमीन में, उस फैला दी पानी उनी भर के खाद उद मार दी, वो देसी खाद लग जाता है उसमें। अब जैसे ले लिया आपने देसी खाद, हमारे खमड़ी गांव में बहुत देसी खाद मिलता है, वहाँ पे बहुत जिंगड़े पलते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, वहाँ से हमारे यहाँ बहुत खाद आता
0: है। प्रमोद कुमार जी, इस समय हमारे जो किसान भैया बहन है वो धान की फसल की तैयारी के लिए अपने खेत तैयार कर रहा है।
2: जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात की आपने।
0: तो उस खेत में काका काम भी कर रहा है जिससे उनकी पैदावार अच्छी हुआ।
2: पहली तो बात आपने बात सही पूछी, दूसरी बात जो अपने धानी पौध डाल रहे किसान भाई लोग, कई बार जुदाई करने के बाद उसके अंदर देसी खाद डालना चाहिए।
0: पौध डालना है,
2: पौध डालना है उसमें।
0: उस पौध की जो मिट्टी हो भुरभुरी हो,
2: मुलायम हो जाए इसकी, उसके अंदर वो खरपतवार सब नष्ट हो जाएगी पानी में। जैसे पौध को अच्छी तरह डालना है, पौध अपने भिजाते हैं कट्टों में, उसे दो तीन बाद में तैयार हो जाती है, उसके बाद अपने खेत में डाल देते हैं।
0: अक्सर देखने में आई है पौध के लिए कनहर की बहुत जरूरत होती
2: है। जिन 10 बीघे खेत में आप पौध डाल रहे हो तो वो तो आप खासी पटाई लगा सकते हैं, मतलब जुताई करने।
0: लेकिन पहले क्या था, पहले बैल चलते,
2: बैल चलते थे,
0: भैंसों से कनहर कर दो तो पौध बड़ा अच्छी होती,
2: बहुत अच्छी।
0: अच्छा, जो हम पौध डालते हैं बामर, कोई देसी खाद डालनी पड़ती है ना?
1: जी सर, डालते भी
2: खाद डाल लेते हैं,
1: कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग
0: का फायदा है देसी खाद डालने,
1: क्योंकि वो पौध अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है, मतलब कलर अच्छा रहता है उसका, जैसे बीमारी लगती है उसमें बीमारी नहीं लगती है।
0: राजेंद्र कुमार जी, आप बताओ कि जो हम पौध डाल रहे हैं तो उसमें देसी खाद से और क्या का लाभ
3: है? पौध जो होती है वो बढ़िया रहती है, बीमारी भी कम लगती है, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें,
0: और देसी खाद को जो कल्ला हुआ है वो मोटी होती है। बीमारी धान में अक्सर पौध से आती है। पौध अगर स्वस्थ हुई तो हमारी धान की पैदावार अच्छी हुई, पौध अगर हमारी कमजोर हुई तो धान की पैदावार हमें अच्छी ना मिलेगी, ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी। अगर हम ज्यादा देसी खाद डालेंगे पौध में तो हमारी पौध अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी।
1: धान जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं होगा, ज्यादा लाभदायक होगा।
0: किस रूप में उपयोग?
1: जैसे अपने घर में खाते हैं ना धान।
0: अच्छा, धान को हम चावल जैसे रूप में
1: खाते हैं,
0: अगर देसी खाद को लोगों को है
1: तो वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
0: तो बहुत अच्छी बात कही गिरी जी, आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही और उन बीमारियों को कारण यह है कि जो हम अंधाधुंध रासायनिक जो उर्वरक हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम संतुलित उर्वरकों को प्रयोग करेंगे तो आज बीमारियां कम होंगी। अगर हम अपने खाने के लिए ज्यादा न जैविक खाद को उपयोग करें, कम से कम रासायनिक खाद डालें, अगर सब हमारे किसान भैया बहन जो अपनाए लें तो ज्यादा सही राय ना रहे।
1: अच्छी बात है सर।
0: प्रमोद कुमार जी, आप बताओ कि जो हमारी धान की पौध लगेगी तो मैं वो अपने खेत में लगाओगे?
2: हाँ,
0: तो कैसे करके तैयारी करो खेत?
2: इतने पौध डाल लेंगे जी, उसके चार तरह से पहले तो गुलाई मिट्टी से बढ़िया करनी चाहिए, उसके बाद जब अपने पाए लगाएंगे उसमें और उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, मतलब उसकी तैयारी करने पड़े लगाने बाद तब उसकी पौध डालते हैं।
0: पौध आपने डाल दी उसके बाद आपको धान रोपने हैं,
2: धान रोपने हैं,
0: उस खेत की तैयारी कैसे कर?
2: उसको 3-4 बार ट्रैक्टर से जो जुतवाना है, जैसे जुतवाते हैं, मतलब कंधे करते हैं, बढ़िया करे कंधे होता है, उसमें आप देसी भी खाद डाल दो पहले, उसमें देसी खाद डालने के बाद उसे कंधे करवा दोगे तो उससे और बढ़िया धान हो जाएगा।
0: मतलब खेत की तैयारी अच्छे कर
2: जितनी अच्छी करोगे उतनी धान अच्छे होगा।
0: राजेंद्र कुमार जी, आप बताओ कि जो हमारा खेत है
3: जी,
0: बाकी ताकत और ज्यादा हम पैदावार मिले, देसी खाद इतनी है नहीं, एक दूसरा काम हो सकता है जहाँ जो हम उर्वरक डाल रहे हैं उनको प्रयोग संतुलित करो जा सकता है
3: जी।
0: उर्वरक है उन्हें कैसे करके अपने खेत में डाला? अंधाधुंध डीएपी ने डाल के, अंधाधुंध यूरिया ने डाल के, लेकिन वो किस प्रकार से डाला?
3: पहले तो सर मैं मिट्टी की पहले जांच कराना चाहिए, जांच कराने के बाद में फिर जैसे देसी गोबर का खाद उपयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद में किस चीज की कमी है, उस पोषक तत्व की कमी है उसके डालना चाहिए साल की साल। जैसे देसी गोबर आप डालेंगे तो उसका पोषक तत्व तो मतलब जमीन की उपजाऊ जो क्षमता वो बढ़ी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। गिरीश जी, आप जानवर पालते हैं?
1: जी पालते हैं सर।
0: कौन कौन से जानवर?
1: भैंस ही पालते हैं हम ज्यादातर।
0: का देख रेख आप करते हो भैंस के लिए?
1: चरी बो रखी है खेत में, चरी लेके आते हैं, खानते हैं, उसे डालते हैं, नान सानी करते हैं, फिर दूहते हैं, उसे पानी पिलाना, नहाना धोवाना,
0: मतलब जानवर के ज्यादातर काम आप स्वयं करते हो। प्रमोद कुमार जी, आप जो बताओ कि जानवर जो पालता, जैसे जो भैंसा पालना, आप जानवर पालते हो?
2: हाँ, पालते हैं।
0: तो जो जानवरन को और खेती

0: गाड़ी को कासा।
1: जैसे कि जानवर के लिए अपने खेतों में चरी कर लेते हैं, उसके बाद जो उनका जो खाद होता है गोबर सड़ी खाद होती है वो बन जाती है, उसे इकट्ठे करने के बाद अपने खेतों में डाल देते हैं, देसी खाद में उपयोग हो जाता है वो।
0: खेती बाड़ी में जो अवशेष बचता है अनाज के बाद, बाकू
1: भूसा,
0: धान कटे को बाकू पुआल, गन्ना कटता है बाकू अगौला, निराई कर रहा है खेत में घास, तो ये सब चीज हमारे काम में आवे ना। राजेंद्र कुमार जी, कहो जाता है खेती और पशु
2: जी
0: एक सिक्का के दो पहलू, कहाँ तक
2: जानवर पालते हैं उनसे ही खेती होती है, खेती से ही जानवर पाले जाते हैं, खेती के साथ साथ चरी बो लेते हैं, बरसीन बो लेते हैं।
0: जब जानवर हम पालेंगे और खेत में काम करने जाएंगे तो जो हम खेत में काम करते हैं बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम जानवरों के लिए संग संग करते रहते हैं। देसी खाद खेत में पड़ जाएगी, खेत में पड़ेगी तो हम जो खेत में से खरपतवार लेकर आएंगे बेल जानवर नहीं लेकर आएंगे, मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान। खेती पशुओं के लिए कर रही है, पशु
3: खेती
0: के लिए, पशु दूध भी देता है गोबर भी करता है, दूध से का लाभ
2: बहुत लाभ है ये, मतलब शरीर को प्रोटीन है बहुत सारी चीजें प्रदान करता है, इससे शरीर में ताकत बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर को, उसको बनाए रखता है, हमारे शरीर के लिए विकास है, ये सब बहुत चीजें काम आती हैं।
0: गिरीश जी आप जी बताओ, जानवर आप पालते हो, आप कह रहे हैं हमारे पास दो भैंसा है, दूध मिठा होता ना होता गर्म
4: जी होता,
0: सब खा ले तो कुछ बेच भी देता
4: हूँ। कहते हैं जब जरूरत ज्यादा होती है पैसों की, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बेचते हैं हम, वैसे तो नहीं बेचते हैं।
0: दूध बेचते हो मिठा बेचते हो?
4: दूध बेचते हैं, मिठा नहीं बेचते हैं, दूध जैसे सुबह को बेचता है शाम के लिए खाने को रहने देते हैं।
0: का भाव चलो जाता है दूध?
4: वही गाँव में 50 लीटर चल रहा है।
0: अच्छा दूध बेचने से कुछ लाभ तो होंगे?
4: लाभ का जी घर में पैसे की दिक्कत होती है तभी बेचता है आदमी, ना तो घर में ही यूज ना करे उसे, वो तो हर आदमी को देखता है कि दूध से कितने बड़े फायदे हैं हमारे, घी बनता है, दही खाने को मिलता है, मठा मिलता है खाने को, क्यों बेचेगा वो?
0: कुछ लोग दूध बेच कर आमदनी कर रहे हैं, खेती बाड़ी को पैसा साल 6 महीने में आता है। राजेंद्र भैया भैंस पाल रहे हैं, प्रमोद कुमार जी भैंस पाल रहे हैं, होत का है कि जब हम जरूरत से ज्यादा उत्पादन करेंगे काउ चीज को
4: जी
0: तो वो हमें बेचने से लाभ मिले। जैसे हम खेती बाड़ी में अपनी खेती करिए रहे हैं, 20 बीघा अगर हमारे धान है या 20 बीघा हमारे गेहूं है, 60 क्विंटल गेहूं भाई 20 बीघा में, तो खान लायक कितना खाओ?
4: 10 क्विंटल
0: 50 क्विंटल तो बेचने ही है। क्यों बेचेंगे? क्योंकि वो हमें जरूरत से ज्यादा हमने उत्पादन कर, ऐसे ही दूध को काम। हम अगर 4-6 भैंसियां पाल रहे हैं खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, भाई खानों की लिमिट होती है
2: जी,
0: तो जितो एक्स्ट्रा भाव बेच कर हम वहां से पैसा ले, बाकी पैसा खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते, घर के काम काज में इस्तेमाल कर सकता, कोई भी काम भाई हम उस पैसा को इस्तेमाल। प्रमोद कुमार जी, जानवरों की बात चल रही है, इस समय के मौसम में जैसे हमें खेती बाड़ी में अपने संतुलित उर्वरक की जरूरत है, अपने खान पान के लिए संतुलित आहार की जरूरत है, ऐसे जानवरों के लिए भी संतुलित आहार की जरूरत होती है?
1: हाँ बिल्कुल होती है जरूरत।
0: काका चीज को विशेष ध्यान रखते
1: हैं, जैसे अपने भूसा लेते हैं भैंसों के लिए तो उसमें ज्यादातर दलिया का उपयोग याद करते हैं, चोकर भी है वो उसमें डालते हैं, हरी पत्ती में चरी इस टाइम चल रही है, अतर भैंसों का खान पान अच्छा रहता है जैसे कि।
0: राजेंद्र जी इस समय प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि खल कम खिलाना चाहिए काका।
2: गर्मी का मौसम है और जैसे भैंस गाभिन होती है तो गाभिन भैंस के लिए मतलब खल नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो गर्म होती है, खल खिलाने से भैंस के लिए दिक्कत हो सकती है,
0: यानी कि जो गर्मी का मौसम है उसमें खल कम खिलाना। राजेंद्र कुमार जी, गिरीश कुमार जी, प्रमोद कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कैसे करा बहुत अच्छी तरीके से जब विषय पे चर्चा करी और अपने अपने विचार साथ जाके लाए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपके लिए भी सर धन्यवाद।
5: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे कृषक गोष्ठी, खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। प्रतिभागी थे प्रमोद कुमार, गिरीश, राजेंद्र कुमार और संचालन कर रहे थे सुरेंद्र भैया। तो इनने कितने अच्छी तरीका से बताई कि हमें अपने खेत किस प्रकार से हम बचा सकते
6: हैं। बिल्कुल, और हम समझते हैं कि हमारे भैया बहनों ने अगर ध्यान पूर्वक ये कृषि गोष्ठी सुनी हुई तो निश्चित है लाभान्वित होंगे। और पूनम बहन इससे पहले अपने बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में, जिसमें मिट्टी की जाँच जरूरी है, पेड़ पौधा लगाना भी जरूरी है, तो एक ऐसो ही लोकगीत है, किसानों मिट्टी चेक कराओ नथुलाल राय की आवाज में, तो कहो तो सुनवा दे अपने भैया।
5: हाँ, हाँ, भैया जरूर सुनवा दो।

0: ये लोकगीत तो आपने बहुत सही सुनवाओ कि हमारे भैया बहन ने अगर सुने हुए ना तो बेजा कहते होंगे, देखो तो कतई कतई बेवारी बात बता दे जो हम अपनी खेती में कर सकता है।
1: बिल्कुल, और देखो जो लोकगीत के माध्यम से जो नथुला लाही और उनके साथियों ने गायक बताई, बिल्कुल बात सही है कि जो रासायनिक हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उनको कम प्रयोग करने हैं, और जैविक खादें जो हैं उनको अधिक से अधिक प्रयोग करने हैं। और पूनम बहन, आपको मालूम हो ही कार्यक्रम के शुरू में हमने एक सवाल पूछो, लेकिन सवाल को जवाब भी अपने भैया बहनों को बता देंगे, लेकिन बात से पहले मौसम को हाल भी अपने भैया बहनों को बता दें।
0: हाँ हाँ भैया जरूर बता दो।
1: तो जो देखो मौसम को हाल हमको मिला हुआ गोविंद वल्लभ पंत नगर के मौसम विज्ञान वेधशाला से, आज रात में गरज के साथ आंधी पानी की संभावना व्यक्त करी गई है। वहीं पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से 15 से

0: 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने को अनुमान भी लगा हुआ है और बारिश की संभावना जो है 70% बताई गई है। बात करें कल के मौसम की, तो कल सवेरे गरज के साथ आंधी पानी की उम्मीद जताई गई है। वहीं कल 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से हवा चलने को अनुमान भी लगा हुआ है। कल आर्द्रता 70% रहने की उम्मीद है और वहीं कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी गई है। तो जो तो हो मौसम को हाल पूनम है। और हाँ पूनम है
1: भैया, हम जय कह रहे हैं कि आपने मौसम को हाल बता दो हो तो भैया बहन उनको सवाल को जवाब बता दो।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे भैया बहन इंतजार में होंगे और हमारे कुछ भैया बहनों ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जवाब हमें लिख कर भी भेजो है, तो उनको भी सही जवाब है। और जो सवाल हो, पशुओं में सर्रा रोग किस मक्खी के काटने से होता है, तो हमारे भैया बहन को पता भी है, हम भी बता दें कि जो डांस मक्खी होती है और जो चौमासे में जब हम पशु बाहर बांध देते हैं तो देखी होगी कि डांस मक्खी लगती है।
1: हाँ।
0: और जब डांस मक्खी काटते हैं तो बाकी प्रोटोजोआ द्वारा जो है हमारे पशु के लिए सर्रा रोग हो जाता है। और इसीलिए देखी होगी कि शाम के लिए अपने जब दूध दूध जाते हैं तो भैंसे इनके आसपास में थोड़ा धुआं कर देते हैं कि डांस मक्खी जब काटती है ना तो पशु हमारे पैर कूदाते हैं, बड़ा परेशान करता है। और पूनम बहन नसीहत की बात करिए तो क्या नसीहत मिली कार्यक्रम से?
1: भैया जय नसीहत मिली कि हमारे जो किसान भैया बहन हैं वे अपने खेतन में अधिक से अधिक जैविक खाद को प्रयोग करें।
0: बिल्कुल सही, और जैविक खाद को जब अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो देखो कम लागत में शुद्ध उत्पादन हम किसान भाइयों के लिए प्राप्त होगा।
1: हाँ भैया, और उनकी जब खेती अच्छी होगी तो हमारे भैया बहन को मन भी अच्छो रहेगा, है ना?
0: बिल्कुल मन लाए अच्छो। और देखो जब शुद्ध उत्पादन मिलता तो देखो चाहे वो दूध हो, पशुपालन की बात करें तो पशुओं के लिए जो हम खिलाते हैं तो वो भी वही आ रहा हो चारा उनको, है ना? तो लेकिन हमें बस ये आवश्यकता इस बात की बस पीछे थोड़ा जाना पड़ा है, पीछे को मतलब जो है जो प्राकृतिक खेती है वहाँ पर हमें जाने पड़ा है। जैसे पहले खेती करते खेत में हरी खाद लगाते, देसी खाद डालते और जो तिलहनी दलहनी जो फसलें बोते, फसल चक्र अपनाते, तो इस तरीके से अगर खेती करें तो अच्छे उत्पादन भी हमको मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा लेने में हम सफल हो सकेंगे।
1: हाँ भैया, हमारे भैया बहन तो हमें उम्मीद है ऐसे ही काम करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन घर के तो समय कतई समाप्त ही चलो कि अपने भैया बहन से विदा लेने को समय आ गया।
0: हाँ बिल्कुल, तो देखो नई नई जानकारियों के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी अगले जो कार्यक्रम होगा वहाँ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम किसानवाड़ी से हम दोनों बहन भैया को दे अनुमति और करो स्वीकार। भैया बहनों राम राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में हमारे सब भैया बहनों को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको आपके भैया कृष्णा
1: और आपकी बहन पूनम की राम राम, राम।
0: पूनम बहन देखो अपने सब गांव में रहते हैं, गांव में रह के जो खेती बाड़ी है जाके अलावा जो और खेती जुड़े व्यवसाय उनको करते हैं
1: है ना भैया,
0: और जाके लेते देखो बाहर जाने पड़ता है, कहीं शहर जाने पड़ लो, कोई दवाई लेने जाने है, कहीं पर बीज लेने जाने है, बहुत सी बातें होती है, कहीं दूध लेके अगर हम बिक्री करें तो वहाँ भी जाने होते हैं।
1: हाँ भैया वहाँ तो हर जगह ही जाने होता है, जहाँ घर के लोग काम पर जाते हो ना।
0: लेकिन आपको मालूम है कि देखो जहाँ भी हम जा रहे हैं तो सुरक्षा के साथ जाएं, सुरक्षा का मतलब जो है कि जो सड़क है वापस सावधानी से चलाएं।
1: हाँ भैया जब आज सही कही आपने कि अगर हम सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना

0: की संभावना कतयनर आएगी।
1: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं देखो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कहीं जा रहे हैं अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हेलमेट लगावे, है ना। और
0: अब गाड़ी भैया थोड़ी धीरे चलावे, कि कुछ लोग कहते हैं हमारा काम बहुत जल्दी है बहुत जल्दी, तो वे बड़ी तेज तेज गाड़ी चलाते हैं।
1: अच्छा तो बात सही कह रही हूँ। अब घर से पहले लेट हो गए जा रहे हैं ससुराल दावत खान ताई, तो उन्हें अरे ससुराल जानते हैं लेट हो गए हम, देर हो रही है, अब भैया तुम घर से लेट हो गए, तो फिर वे गाड़ी ऐसे भगाते हैं।
0: हाँ।
1: और फिर ऊपर से क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं, नशीले पदार्थ जो इस्तेमाल करते हैं, फिर भैया कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो ऐसे बिल्कुल ना करने हैं। जो रोड की लाइट है, हरी लाइट है, आपको रुकने हैं, लाइट मतलब जाने हैं हरी लाइट पे और लाल लाइट पे आपको रुकने हैं, सिग्नल आप रोड के देखें जाके साथ साथ, कहीं कोई बालक जा रहे हैं कहीं से या कोई जानवर वगैरह जा रहा हो तो वहाँ भी सुरक्षा बरतें।
0: हाँ, धीरे
1: तो इस तरीके की सावधानी है वे अपने रखने हैं।
0: हाँ भाई।

0: तो पूनम मैम, देखो जो अपनी बातचीत है वो होगी, लेकिन बाकी से पहले अपने भैया बहनों को जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत जो बातचीत जो आपने करी है
1: हाँ
0: डाकघर के बारे में, कि डाकघर से क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं, ये सब बातें आपकी वही हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट जो मास्टर हैं सरकड़ा की, कुमारी पुष्पा पाठक, तो क्या बातचीत भैया, क्या बात है, उन्होंने बताई हैं कौन कौन सी योजनाएं, तो अपने भैया बहनों को सुनवा दें।
1: हाँ भैया, जरूर सुनवा दो। बहुत से ऐसे भैया बहन हैं जो और भी काम करते हैं और बहुत बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जो उन्हें करने होते हैं। ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं पोस्ट ऑफिस में, जहां पर हमारी बात हो रही है। जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम?
2: मेरा नाम पुष्पा पाठक है।
1: आप किस जगह पे और क्या काम करती हैं?
2: सरकड़ा पोस्ट ऑफिस जो कि फरीदपुर के अंडर में आता है, वहां पर मैं एबीपीएम की पोस्ट पर काम करती हूँ।
1: अच्छा, तो ये नौकरी आपको कब मिली थी?
2: जो नौकरी है ये मैंने 2024 में ज्वाइन करी है।
1: अच्छा, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे आप बढ़ गई हो, ऐसे सोच रही होंगी आपकी आवाज सुनकर कि बहुत से काम हम ऐसे करें जो हम इस मुकाम तक पहुंच पावे, उनके लिए आपका काम।
2: वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन ये जो मेरी जॉब है इसके लिए ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए। हाई स्कूल पास जो बच्चे हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है इस जॉब के लिए।
1: अच्छा, तो हाई स्कूल के बाद डाल सकते हैं फॉर्म?
2: जी जी हाँ, जिसने 10th पास कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल करके ये जॉब जो है ले सकता है, अगर अच्छे मार्क्स हैं उसके तो।
1: चलो, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीका से वो जो नौकरी पा सकता है, या फिर समय समय पर बहुत सी ऐसी नौकरियां होती हैं जो बहनन के लिए भी आती हैं, और जो हमारे भैया होता है वो भी जो नौकरी में काम करता है। तो आपको जो नौकरी जो करती हैं आप, कितने गांव हैं जाके अंदर जो आपको करने होते हैं जो
2: देखिए,
1: काम?
2: जिस पोस्ट ऑफिस में मैं काम करती हूँ उसके अंडर में कुल मिलाकर 10 जो गांव है वो जो हमारे पोस्ट ऑफिस के अंडर में है।
1: क्या क्या काम करने होता है आपको वहाँ पर?
2: मुझे तो इसमें जो पोस्टमैन के जो काम होते हैं वो सारे काम मैं इस पोस्ट ऑफिस में करती हूँ, जिसमें डाक लेकर आना और फिर उस डाक को लोगों तक पहुँचाना, और फिर जो डाक नहीं गई हुई है उसको दोबारा वापस देकर आना, और इसके साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज है उनके बारे में।
1: अच्छा, क्या क्या ऐसी सर्विस हैं, यानी कि योजनाएं भी बहुत सी समय समय पर हमारी बहनों भाइयों को और जो हमारी बेटियां हैं उनको मिलती हैं? आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे भैया बहनों को जिनसे लाभ होता है?
2: देखिए, योजनाएं तो काफी सारी हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके के खाते भी हैं जो पोस्ट ऑफिस में लोग खुलवा सकते हैं और जिनसे वो सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं की या छोटी बच्चियों की, तो छोटी बच्चियों के लिए एक बहुत ही लोगों को सबको पता है सुकन्या समृद्धि खाता जो है वो खुलाया जाता है पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। इसमें ऐसा रहता है कि जो छोटी बच्ची हैं, जो 10 साल तक की बच्ची है, उनका ये खाता खुलता है और उनके नाम पर ये खाता खुलता है जिसमें पैसे जो है वो जमा कराए जाते हैं, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं या फिर बच्चे की शादी वगैरह करनी हो तो उस पैसे को निकालकर उससे उनकी मदद हो सके।
1: अच्छा, यानी कि 21 साल तक उन्हें जमा करने होता है?
2: 21 साल तक नहीं, इसमें खाता खुलने के बाद से 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं।
1: अच्छा।
2: और जब बच्ची 10th में आ जाती है या फिर 18 साल के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं,
1: चाहे उसकी पढ़ाई में जरूरत हो या फिर किसी और काम में कर सकते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में अगर आपको लगाना है तो पढ़ाई में लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको शादी करनी है तो शादी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: आपने जो बताई कि वे 15 साल तक जमा करता है,
2: जी
1: तो वे कितने कितने रुपए जमा करता है महीना?
2: देखिए, इस खाते की यही एक खास बात है कि इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको हर महीने इतने पैसे

0: जमा ही करने हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जो भी बच्ची है उसके जो भी माँ बाप है उनसे जितना बन पा रहा है जब बन पा रहा है तब इस खाते में अपने पैसे जो है वो जमा कर सकते हैं।
1: बहुत फायदा है हमारे भैया बहनों को कि उन्हें इकट्ठे न जमा करने हैं न महीना के हिसाब से करने हैं।
0: हाँ, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आपके पास जितने पैसे हो पाए उतने पैसे आप जमा कर सकते हैं।
1: अच्छा, इन खातों के अलावा कुछ और भी ऐसी योजनाएं हैं या फिर कुछ ऐसे लाभ हैं जो हमारे भैया बहन इस डाक खाने के माध्यम से ले सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल है, खातों के अलावा इंश्योरेंस वगैरह जो है, बीमा वगैरह जो है वो भी पोस्ट ऑफिस में होता है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो लोगों को मिलता है।
1: अच्छा।
0: और अलग अलग तरीके के बीमे जो है वो पोस्ट ऑफिस में होते भी है।
1: अच्छा, पोस्ट ऑफिस में जो बीमे होते हैं उनमें आपकी क्या भूमिका होती है?
0: कि लोगों को हमें बताना होता है, उसके बारे में अच्छे से समझाना होता है, और फिर हमारा ये रहता है कि हमें कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जिनको हम उन टारगेट को पूरा कराना होता है ये बीमे करके लोगों के।
1: तब तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भैया बहनों को इससे जानकारी भी बहुत मिलती होगी।
0: हाँ, क्योंकि ऐसा है इंश्योरेंस वगैरह के बारे में ग्रामीण लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है।
1: हाँ।
0: उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो काफी अच्छी चीज है।
1: हाँ।
0: आपके मुश्किल वक्त में अगर आपको पैसे मिल जा रहे हैं, अगर आपके मुश्किल वक्त में, तो वो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, ये बात तो सही की आपने कि बहुत अच्छी बात है, और इंश्योरेंस के बारे में हमारे बहुत से भैया बहनों को पता भी नहीं होता। तो अगर आपसे जानना चाहें कि हमारे भैया बहनों को आप किस तरीका से समझाती हैं कि उन्हें इंश्योरेंस करवाना चाहिए?
0: आने वाला इंसान अगर इंटरेस्टेड होता है तो हम उसको सारे जो भी हमारे पास प्लान्स होते हैं उसके बारे में उसको हम बताते हैं कि कितनी उम्र से वो अपना बीमा जो है वो शुरू करवा सकता है, कितने साल तक वो बीमा जो है अपना चलाना चाहता है, उसका प्रीमियम मंथली जो है वो कितना होगा, उसको कितने पैसे जमा करने होंगे, और कितना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसे, कितना जब मैच्योर हो जाएगा उसका इंश्योरेंस तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी बात हम उसको बताते हैं।
1: अच्छा।
0: और साथ ही साथ इसमें नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी जो है वो रहती है।
1: अच्छा, उनके घर में से ही किसी को नॉमिनेशन बनाया जाता
0: है? जी जी जी, जो भी व्यक्ति है जो अपना बीमा करवा रहा है वो ही अपने किसी मतलब सगे संबंधी को जो है वो नॉमिनी की तरह बना सकता है।
1: अच्छा, तो उससे अगर उसके साथ कोई परेशानी हो तो बाय मिल जाता है?
0: जी हाँ, अगर जो व्यक्ति है जिसने बीमा करवाया है अगर वह व्यक्ति नहीं रहता है तो वो जो पैसा है वो नॉमिनी को ही मिलता।
1: आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताई और ये भी बताया कि इंश्योरेंस भी डाकखाने के माध्यम से भैया बहन करा सकते हैं, लेकिन आपने देखी होगी कि गांव की अगर बात करें तो गांव में लोग ज्यादातर जाए कहते हैं कि अरे हम नहीं कराएंगे, वो पता ना डाकखाने वाले को। जो भैया बहनों की जो सोच है कि कहीं हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, बाकी आप उनको का सलाह के रूप में कहना चाहोगे?
0: हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही कही है, लोगों को रहता है उन्हें इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है इस बात पे, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारा मार ना लिया जाए, पता नहीं हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को अच्छे से समझाते हैं, और जो लोग हमारे पास पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी एग्जांपल देके हम उन्हें बताते हैं कि देखिए नहीं, आपका पैसा नहीं मारा जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट है।
1: हाँ।
0: ये कोई प्राइवेट नहीं है कि यहाँ पर पैसा आपका मार लिया जाएगा, और हम भी जो है वो सरकारी लोग हैं, तो हम पर विश्वास जो है वो करा जा सकता।
1: जो डाकखाने के मेंबर होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, आप लोगों को उनकी बात माननी चाहिए, आपके कहने का मतलब यही है।
0: जी, जी।
1: आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत से भैया बहन सुन रहे हैं, उन सब से आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगी?
0: मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज और बहुत अच्छे अच्छे अकाउंट जो है वो खोले जाते हैं, और जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए और इनका फायदा उठाना चाहिए। सेविंग करना बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति को अपने स्तर पर सेविंग्स करनी चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात पुष्पा जी, आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे भैया बहनों को दी, वो सुनकर लाभान्वित होंगे। आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, देखो अभी आप सुन रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत डाक घर से मिलने वाली सुविधाओं के विषय में, जिसके विषय में जानकारी दे रही पुष्पा पाठक और आपसे बातचीत कर रही बहन पूनम।
3: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और पूनम मैम, देखो इससे पहले अपने बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम है, गर्मी तो पड़ी रही है, और ऐसे में अपने लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कहीं शिमला चले जाते हैं, कोई कश्मीर चले जाते हैं, कोई भैया नैनीताल चले
5: तो
2: जाते हैं।
5: लाग रही भैया, बहुत लाग रही है आपको घूमने की?
2: हाँ,
5: आप गुनगुनाने की?
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एक ऐसी ही लोकगीत है, मैं मर गई गर्मी से ले चल शिमला बाबू।
5: हाँ भैया, तो कुछ भैया बहन ने कमेंट्स भी करी है ना, तो जी हैं जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठहरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श आदि।

0: आदित्य, अमित, रेनु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतिमा। बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो कार्यक्रम के माध्यम से लोकगीत सुनने के लिए कहते हैं। अच्छे भैया और कोई है का?
1: हाँ बिल्कुल, जे देखो फरमाइश हमको मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और आप हैं भिलाई, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल और इनके परिवार के सभी सदस्य, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य, और दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और इनका पूरा परिवार, और ऐसे ही हमारे बहुत से भैया बहनों ने जो फरमाइश लिख के भेजी है तो अपने भैया बहनों को सुनवा रहे हैं जे लोकगीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और फिलहाल भैया बहनों, आज को ग्राम जगत को सफर बस यहीं तक। हम दोनों बहन भाइयों को देव अनुमति। भैया बहनों,
3: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए।

स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 13 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 12 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन ले। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 12 जून 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो चुके हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत

0: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

0: बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
3: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

0: आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
1: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
0: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप का सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
0: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 7:31, यानी समय हो चला है आपके अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने प्यारे प्यारे से कार्यक्रम अनुरोध गीत में। मैं हूँ अमृता और भाई हर बार की तरह आपके ढेर सारे पत्र लेकर हाजिर हुए हैं। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नामों को शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइशों को पूरा करें, आपके अनुरोधों को पूरा करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत जिसको सुनने के लिए आप सभी ने अनुरोध किया है, आवाज है के की, फिल्म का नाम है जन्नत, बोल है सईद कादरी के, संगीत है प्रीतम का, सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से

बत्ता परिवार मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को सुनना चाहे कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक मीरक और मीका वीरक। ये पत्र हमें भेजा है जसपुर उत्तराखंड से, लिखने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर और परिवार के सभी सदस्य। प्रमिलागंज आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये पत्र है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीवन बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ये पत्र हमें भेजा है छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास, होली चौक, बरेली यूपी से। लिखने वाले हैं रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय और फजरुद्दीन भाई व परिवार के सभी सदस्य। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म जन्नत का गीत आपके अनुरोध पे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 FM पर। और आइए चलते हैं आपके अगले अनुरोध की ओर। फिल्म का नाम है मर्डर, आवाज है आमिर जमाल की। सुनना चाहा है इस गीत को आप सभी श्रोताओं ने। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और परिवार के सभी सदस्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा व परिवार के सभी सदस्यों ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज और साथ में है साहिल और बिट्टा बजाज। महादेव घाट अमलेश्वर से ये पत्र हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। अर्जुनी से पूजा साहू और सरोजनी साहू। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और साथ हैं जुनेद अब्बासी। अगला पत्र हमें भेजा है सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से ये पत्र है वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार का। मोहल्ला तरैया औरला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। पीएससी नकटिया से ताराचंद और बबली। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म मर्डर का ये गीत।

अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और आइए चलते हैं अगले अनुरोधों की ओर, यानी अगले पत्रों की ओर। ये पत्र हमें भेजा है बटिंडा रोड डाबली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। कार्यक्रम का अगला पत्र है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। भवानी सिंह ताड़ा, उनका पता नहीं है। और चलते हैं अगले पत्र की ओर, सादुल जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ व इनके परिवार के सभी सदस्य। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब व परिवार के सभी सदस्य। चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, जसपाल यादव सागर मध्य प्रदेश से। जिला राजनंदगांव 36 गढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश व परिवार के सभी सदस्य। अलबेला, और ये अगला पत्र हमें भेजा है जुनबानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ सुरीत रमेश साहू तारा, विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता

रिसीवन नीलकंठ और चंद्रहास हीरेंद्र, साथ में है संजीवन त्रिलोक कुमार, राजा रणजीत साहू। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से ये पत्र हमें भेजा है पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष तन्मय और अपूर्वा गौड़ ने। ग्राम हिंगड़ी आलोद जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायवा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। सफेदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना फैमिली। चनेश्वर गोट कराची से ये पत्र भेजा है अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्णलाल खत्री और इनके साथ में है मोहम्मद आमिन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव। आप सभी ने सुनना चाहा है कृष्णा और हिमेश रेशमिया की आवाज में फिल्म आशिक बनाया आपने का गीत, बोल है समीर के, संगीत है हिमेश रेशमिया का ही।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। फिल्म का नाम है गैंगस्टर, आवाज है अभिजीत की, बोल है नीलेश मिश्रा के, संगीत है प्रीतम का। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी कर रहना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी, रचना, एकता कुमारी, दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक नकुल, नैन्सी और सारांश। कटाचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, गुरु नानक नगर मलोत पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती और तनीश। इसी गीत को सुना चाहा है एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से वीपी गौतम, सरिता, अनन्या, ऐश्वर्या, श्रेय, कुश, रिंकू, टिंकू और रीना ने। कस्बा जादवपुर पोस्ट भैरपुरा बरेली से अनीस खान, मुनीस खान, आरिश, मुनाजिर, परवीन, आस्कारा खान, दरकशा और शाजिया खान। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना, महजबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहां। आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और उस्मानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री यादव और केशव यादव ने ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा, जिला बदायूं, तहसील दातागंज से। ककराला बदायूं से मशहूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोस्वाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव, हर्ष मास्टर और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। राति के 8 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव। वार्ताकार है डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार की भी खुशबू आती थी। गलियों में, चाय की दुकानों पर और घरों के आंगन में खबरों की चर्चा होती रहती थी। लोग फुर्सत से समाचार पत्र पढ़ते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। जिंदगी की भागम भाग के कारण अब अखबार की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और उसी पर घूम रहा है हमारा पूरा संसार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, इन्हीं को हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। एक शोध अध्ययन के अनुसार 11 से 18 वर्ष आयु के युवा दिन भर में औसतन 64 बार मोबाइल पर सोशल साइट्स का प्रयोग करते हैं या देखते हैं। युवा और वृद्ध जन भी इसमें पीछे नहीं है। संक्षेप में कहें तो सोशल मीडिया ने हमारी जीवन शैली ही बदल दी है, बोलचाल तथा सोच को भी प्रभावित किया है और इसने एक नया भाषाई जनतंत्र उत्पन्न किया है। सामाजिक मीडिया ने मानव संचार को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भाषा के रूप, स्वरूप और प्रयोग में काफी बदलाव किया है। हिंदी भाषा भी इस बदलाव से अछूती नहीं है। पहले हिंदी मुख्य रूप से साहित्यकारों, लेखकों और सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सामान्य रूप से बोली जाती थी, लेकिन शहरी युवा वर्ग उससे दूर होता जा रहा था। आज सोशल मीडिया ने हिंदी को एक वर्ग विशेष के एकाधिकार से

मुक्त किया है। अब लाखों करोड़ों युवा रोज हिंदी में लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, कॉमेडी हो, राजनीति हो या संस्कृति, सभी में हिंदी दृश्य श्रव्य सामग्री तथा पठन सामग्री की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन जहां सोशल मीडिया ने हिंदी के पठन पाठन तथा उपयोग को एक नई ऊंचाई तथा अभिव्यक्ति दी है, वहीं इसने हिंदी के मूल स्वरूप में काफी परिवर्तन भी कर दिया है। हिंदी में सामाजिक मीडिया के प्रभाव के कारण संक्षिप्तता, अनौपचारिकता, नई शब्दावली का विकास और हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रित प्रयोग, जिसे हिंग्लिश के नाम से जानते हैं, बढ़ा है। सोशल मीडिया में प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों का भी काफी प्रयोग बढ़ा है और मानक पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होनी चाहिए। इसमें बहुत अधिक शुद्धता या व्याकरण निष्ठता का आग्रह करना इसे क्लिष्ट और दुरूह बनाता है, जो भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में कहीं न कहीं बाधा डालता है। सामाजिक मीडिया ने इसे व्यापक जनसंख्या तक पहुंचाया है, इसके प्रचार प्रसार को प्रभावशाली बनाया है। युवा वर्ग ने भाषा का प्रयोग करने का नया तरीका खोजा है, जो इसे अधिक जीवंत और गतिशील बनाता है। शब्दों को तथा भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का भी प्रचलन बढ़ा है। कुछ विशेष शब्द जैसे वायरल, ट्रेंडिंग, रील, ट्रोल, पोस्ट, म्यूट, ब्लॉक, शेयर और लाइक जैसे शब्दों का आम जीवन में बोलबाला बढ़ गया है, ये प्रचलन में आ गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी के संयोजन से उत्पन्न हिंग्लिश युवाओं में काफी लोकप्रिय है। वे अब बिना हिचकिचाहट अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि अतीत में वर्षों से एक वंचित वर्ग और महिलाएं थीं जो सदियों तक चुप रहने को मजबूर थीं। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लेकिन आज सोशल मीडिया पर वे खुलकर अपनी बात रख रही हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से तकनीकी विकास, उपभोक्तावाद, बाजारवाद जैसी शक्तियों का दबाव भी है। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों को भी नई पहचान मिली है, जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब अब सोशल मीडिया पर खूब प्रचलित हैं। अनेकों नए कवियों, लेखकों और क्रिएटर्स को सोशल मीडिया के कारण एक नई पहचान मिली है। उन्हें सामने आने का मौका मिला है। उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल को, अपनी विधा को व्यक्त करने का अवसर मिला है। रचनाओं के प्रकाशन की जटिलताओं से मुक्ति मिली है। अब शायरी, कहानियां, गीत संगीत, कविताएं कुछ ही क्लिक में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया का भी प्रभाव दो तरफा है। हमारी हिंदी भाषा की शुद्धता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लंबे गहरे विचारों की जगह छोटे छोटे वाक्य और इमोजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इससे भाषा की गहराई, भाव और विस्तार दोनों ही कम हो रहे हैं। सोशल मीडिया में अब शॉर्ट शब्दों का प्रयोग या अंग्रेजी शब्दों के शॉर्ट वर्जन का प्रयोग काफी बढ़ गया है, जिससे हिंदी की मूल भावना तथा व्याकरण की शुद्धता पर काफी विपरीत असर पड़ा है। सबसे चिंताजनक बात है सोशल मीडिया में फेक न्यूज, गाली गलौज, ट्रोलिंग और अश्लील भाषा का प्रयोग, जिसका असर आम जनता पर, खासकर बच्चों और किशोरों पर भी पड़ा है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें डिजिटल हिंदी की नई अवधारणा विकसित करनी होगी, जो शुद्ध भी हो, सरल भी हो और आधुनिक भी हो। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल हिंदी लेखन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को शुद्ध हिंदी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और

0: सबसे महत्वपूर्ण हम खुद भी अपनी पोस्ट, कमेंट और मैसेजेज में जितना हो सके शुद्ध, सुंदर और मर्यादित हिंदी का प्रयोग करें। तकनीकी के विकास के साथ हम सोशल मीडिया के प्रयोग को बंद तो नहीं कर सकते, हम इसमें सुधार करके हिंदी को व्याकरणनिष्ठ, शुद्ध और प्रभावशाली बना सकते हैं। युवाओं को जागरूक करके हम उन्हें हिंदी के प्रति शुद्ध लेखन और पठन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, भाषा वो है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त कर सके। अगर हम सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शुद्ध हिंदी में व्यक्त करेंगे तो न केवल हमारी भाषा बचेगी बल्कि वह और समृद्ध भी होगी। सोशल मीडिया ने हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान किया है। अब इस मंच का उपयोग हम सभी को हिंदी की गरिमा बढ़ाने, शुद्धता लाने और मर्यादा बनाए रखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान भी है। सामाजिक मीडिया ने हिंदी भाषा को सरल, लोकप्रिय और सुलभ बनाया है, किंतु इसके साथ ही भाषा की मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। हम सबको इसके प्रति सजग रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। सोशल मीडिया भाषा विकास में निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव की वार्ता। और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद अंदाज की गाई चंद।

जुदाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की। गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों को अभी आपने सुना फिल्म धड़कन में, और इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम

0: के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी

0: 33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अच्छा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को

0: विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में चार चार टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाजें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल, मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी बर्मन का है संगीत।

0: के रखा था।
1: ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
2: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज ऑल्सो प्रीवियस सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार

0: आ गया।
1: क्या बात?
0: हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था, तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही, और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: गवारा।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

हीर रांझा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अवतार।

बंटवारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान का राग यमन में सरोद।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान का राग यमन में सरोद वादन। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे

0: through the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही है रीमा पाराशर।
3: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद आपका।
3: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
4: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
3: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
4: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
3: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
4: सबके साथ है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको

0: अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था भारत को, हमारे प्यारे देश को। एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी

0: कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली थाली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है, परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ।

पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया

0: और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी तीन गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का

0: लिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है,

जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी

भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर मैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से उसको की जो उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो

0: चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे। इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही। जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहिए?
0: ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विद्यालय था। एकदम अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ। उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था उध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR/VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो

0: वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए, उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिले।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं और हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।